0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। इस अवसर पर मुख्य कार्यक्रम आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।

0: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
1: इसके अलावा सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय, चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में ही नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। वहीं INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टॉरपीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉकड्रिल का अभ्यास किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मोज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस को लगातार दूसरे वर्ष पासपोर्ट सेवा के लिए राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये पुरस्कार पासपोर्ट सत्यापन में तेजी, लोकोन्मुखी सेवा उपलब्धता और सुशासन में जम्मू कश्मीर पुलिस के उत्कृष्ट योगदान की मान्यता के तौर पर है। विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में ये पुरस्कार प्रदान किया। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 213.67 मीटर तथा 1404 किलोहर्जमा हामी आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। श्रोता, हाम्रो स्टुडियोको घड़ी अनुसार समय बिहानको 7:05 भइरहेको छ र अब प्रस्तुत गर्दैछौ पुराना हिन्दी चलचित्रका गीतहरू समेटिएको कार्यक्रम गोल्डन मेलोडीज। सदाबहार हिन्दी चलचित्रका गीतहरूको कार्यक्रम गोल्डन मेलोडीजको प्रतीक्षा गरेर बस्नुहुने हाम्रा सम्पूर्ण संगीत प्रेमी श्रोतागणलाई हार्दिक स्वागत जनाउँदछौ। कार्यक्रममा प्रथम प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौं चलचित्र रिक्सावालाबाट लिएको गीत। के शंकरद्वारा निर्देशित अनि आरएम वीरप्पनद्वारा निर्मित यो चलचित्र 24 अगस्त 1973 सालमा दर्शक सामु आएको हो र यस चलचित्रमा रणधीर कपूर, नीतु सिंह, माला सिन्हा अनि प्राणले मुख्य रूपमा अभिनय गरेका छन् भने आरडी वर्मनले चलचित्रका संगीतहरूमा धुन भरेका छन्। श्रोता, स्वीकार गर्नुहोस् कार्यक्रमको यो पहिलो प्रस्तुति। चलचित्र रिक्सावालाबाट कलाकार किशोर कुमार अनि आशा भोसलेको युगल स्वरमा रहेको यो गीत।

0: हामी आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं र समय यस बेला बिहानको 8 बज्न लागेको छ र अब यहाँहरूले सुन्नुहुनेछ आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्र अनि उत्तर पूर्वी सेवा शिलङ केन्द्रबाट क्रमैले हिन्दी अनि अंग्रेजी भाषामा समाचार कृपया केही क्षण प्रतीक्षा गर्नुहोला।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और आग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
2: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग

0: की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
0: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
1: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे की राजदूत मेयलिन स्टेनर भी कार्यक्रम में शामिल हुईं। ब्रह्मकुमारी संगठन ने ऐतिहासिक लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया।

0: आज उत्तर प्रदेश में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की। आज गुजरात में भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित हैं। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: ओडिशा ने आज पूरे देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न बड़े उत्साह और लोगों की भारी भागदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस साल के आयोजन के लिए चुने गए 12 खास हेरिटेज स्थलों में से एक मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर मनाए गए इस समारोह के साथ ही एक हफ्ते तक चल योग महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है और इस अवसर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये कार्यक्रम सदर इलाके गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
3: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ते।

0: ಚಿದಾತ್ಮಾನಮಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೇ ಸಾಂಖ್ಯೇನ ಯೋಗೇನ ಕರ್ಮ ಯೋಗೇನ ಚಾಪರೆ. ಯೋಗ ಏಕ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಹೈ ಜಿಸ್ಕಾ ಉಲ್ಲೇಖ ವೇದೋ ಉಪನಿಷದೋ ಔರ್ ಗ್ರಂಥೋ ಮೇ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ. ಯೇ ಶರೀರ ಕೋ ಸ್ವಸ್ಥ ರಖನೆ, ಮನ ಕೋ ಏಕಾಗ್ರ ಕರ್ನೆ, ಆತ್ಮ ಚೇತನಾ ಬಢಾನೆ ಔರ್ ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ನೆ ಕಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಹೈ. ಯೋಗ ಕಿ ಹಿ ಏಕ ಶಾಖಾ ಧ್ಯಾನ ಭೀ ಹೈ. ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಔರ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿ ಕಾ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರಶಸ್ತ ಹೋತಾ ಹೈ. ಅಗರ್ ಕುಛ ಯೂ ಕಹಾ ಜಾಯೆ ಕಿ ಧ್ಯಾನ ಸಚೇತನ ನೀಂದ ಹೈ ಔರ್ ನೀಂದ ಅಚೇತನ ಧ್ಯಾನ ತೋ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ನಹೀ ಹೋಗಿ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಧ್ಯಾನ ಏಕ ತರಹ ನಿದ್ರಾ ಕಿ ಐಸಿ ಅವಸ್ಥಾ ಹೈ ಜಿಸ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಕ ತರಹ ಕಿ ನೀಂದ ಮೇ ತೋ ಹೋತಾ ಹೈ, ಲೇಕಿನ್ ಸಾಥ್ ಹಿ ಉಸ್ ಸಮಯ ಉಸ್ಕೆ ಭೀತರ್ ಪೂರ್ಣ ಚೇತನಾ ಭೀ ಹೋತೀ ಹೈ. ಠೀಕ ಇಸ್ಕೆ ಉಲಟ ನೀಂದ ಮೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚೇತನಾ ಮೇ ತೋ ಹೋತಾ ಹೈ, ಲೇಕಿನ್ ಉಸ್ಕೆ ಮನ್ ಕೆ ಭೀತರ್ ತಮಾಮ್ ತರಹ ಕೆ ವಿಚಾರ ಹಿಲೋರೆ ಲೆ ರಹೇ ಹೋತೇ ಹೈ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಶೋಧ ಭೀ ಯೇ ಸಿದ್ಧ ಕರ್ತೇ ಹೈ ಕಿ ಯೋಗ ಔರ್ ಧ್ಯಾನ ಕರ್ನೆ ಸೆ ರಕ್ತಚಾಪ ನಿಯಂತ್ರಿತ ರಹತಾ ಹೈ, ಪ್ರತಿರಕ್ಷಾ ಪ್ರಣಾಲಿ ಮಜಬೂತ್ ಹೋತೀ ಹೈ ಔರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತಾ ಬಢತೀ ಹೈ. ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿವಸ ಹಮೇ ಯೇ ಸಂದೇಶ ದೇತಾ ಹೈ ಕಿ ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿ ಔರ್ ಸಂತುಲನ ಕೆ ಬಿನಾ ವೈಶ್ವಿಕ ವಿಕಾಸ ಕಿ ಸಂಕಲ್ಪನಾ ಅಧೂರಿ ಹೈ. ಇಸಿಲಿಯೇ ಕಹಾ ಭೀ ಗಯಾ ಹೈ ಕಿ ಯೋಗಃ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಂ, ಅರ್ಥಾತ್ ಕುಶಲತಾ ಕೆ ಸಾಥ್ ಕರ್ಮ ಕರ್ನಾ ಹೀ ಯೋಗ ಹೈ.
1: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के तीन स्वदेशी पोतों आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे. एक रिपोर्ट.
2: नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है. इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है. आईएनएस दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है. आईएनएस संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है. आईएनएस अग्रह तटीय रक्षा के लिए टॉरपीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है. नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है. समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी.
1: स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं.
3: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है. निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है. एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है. परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी. सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मोज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं. इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है. ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेलाड. पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है. 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है. ये वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था. ब्यौरा हमारी संवाददाता से.
4: 5 दिनों तक सिनेमा का शानदार उत्सव प्रस्तुत करने के बाद मिफ 2026 का आज समापन होगा. मिफ के अंतिम दिन महान फिल्मकार वी शांताराम की 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उनकी स्मृति को समर्पित फिल्म वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट का प्रदर्शन होगा. आज शाम मुंबई के रविन्द्र नाट्य मंदिर में आयोजित होने वाले समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे. इन पुरस्कारों में ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ कुल 45,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है. अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई.
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के नौगांव जिले की जुमरमुर पंचायत के प्रयासों पर. इस पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी. मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है. असम और मेघालय में भी बृहस्पति

0: शनिवार तक कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
1: धन्यवाद भरत। एनटीए ने सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ आज नीट यूजी पुनः परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी समाचार पत्रों की ये पहली खबर बनी है। हिंदुस्तान लिखता है अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं नीट का शुद्धि योग, छात्रों से ज्यादा सिस्टम की परीक्षा। लेबनान में इसराइल के हमले, हारमूज फिर बंद, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को अहमियत दी है। ईरान ने अमरीका को घेरा, इसराइल अपनी सुरक्षा पर अड़ा। मानसून की 2 हफ्ते की सुस्ती टूटेगी, 23 से फिर आगे बढ़ेगा, दैनिक भास्कर की खबर है। योग करने में भी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, दुनिया में योग का बिजनेस 12 लाख करोड़ तो भारत में 57,000 करोड़ पार, लोकसत्व की सुर्खी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दैनिक जागरण ने भी योग को अपने संपादकीय पन्ने पर अहमियत दी है। पत्र लिखता है मानवीय क्षमता बढ़ाता है योग। 7 सबसे ऊंचे शिखर छूने के करीब उत्तराखंड का युवा रुद्रप्रयाग के आकाश नेगी ने फतेह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस, हिन्दुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है दुनिया के सभी महाद्वीपों के 7 शिखरों में से 6 पर फतेह की, अब अंटार्कटिका की बारी। आज फादर्स डे पर विशेष राजस्थान पत्रिका ने भावुक कर देने वाली खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है पिता नहीं रहे पर हर दिन मिल रहा उनका आशीर्वाद, प्रतिमाओं में स्मृतियां, हर शुभ कार्य से पहले लेते हैं बच्चे आशीर्वाद।
0: धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने हुरमुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। दिल का मेल बॉक्स आपके लिए, स्वागत करती हूं मैं कुसुम।

जी हाँ यारो, उठो चलो भागो दौड़ो, ये कह रहा है आज का दिन, क्योंकि आज है इंटरनेशनल योगा डे। और साथियों, जैसा कि आपको पता है कि ये जो योगा है, आज का दिन है, इसकी थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। तो योगा के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं योग गुरु योगी गुलशन कुमार जी। गुलशन कुमार जी सालों से योगा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और इसके लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा इन्हें अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। बहुत बहुत स्वागत है गुलशन कुमार जी आपका। हेलो गुलशन कुमार जी, आप हमें सुन रहे हैं? गुलशन कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शायद लाइन कट गई है, आवाज नहीं आ रही है गुलशन कुमार जी की, तो चलिए हम एक गीत सुन लेते हैं।

साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है इंटरनेशनल योगा डे और इस अवसर पर हमें योगा के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं योग गुरु योगी गुलशन कुमार जी। गुलशन कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो गुलशन कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और मुझे लग रहा है इस बार भी बात नहीं हो पा रही है, कुछ टेक्निकल इशू होगा। फिलहाल गीतों का ये जो सफर है ये जारी रहेगा। लीजिए अगला गीत सुनिए, फिल्म उपकार से महेंद्र कपूर की आवाज में।

साथियों, हमें खेद है कि हम आज आपकी बातचीत गुलशन कुमार जी से नहीं करवा पाए, हम बात नहीं कर पाए। फिर कभी जरूर ये कोशिश करेंगे और होगी, जरूर होगी बातचीत। फिलहाल आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर वक्त हो चला है समाचारों का, तो आइए जुड़ते हैं समाचारों से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में नौसेना के तीन स्वदेशी पोतों आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रय का जलावतरण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पोत रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाते हैं।
1: ये तीनों पोत भारत के तीन महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आईएनएस दुनागिरी, अग्रय और संशोधक का नौसेना में शामिल होना भारत की समुद्री क्षमता के विकास में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पड़ाव साबित होगा। उन्होंने कहा कि ये तीनों पोत अब भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योग अभ्यास में भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा आज हो रही है। ये परीक्षा देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा में अंग्रेजी तथा 12 भारतीय भाषाओं में उत्तर देने का विकल्प है।

0: शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
1: नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। अमरीका और ईरान के प्रतिनिधि आज वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं। ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान में इसराइली हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा कर दी है। श्रीलंका के दांबुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 12 ओवर में 2 विकेट पर 144 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi today commissioned 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra in Kolkata today. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. INS Dunagiri, a Project 17A stealth frigate, is armed with BrahMos missiles and medium-range air defense systems. INS Sanshodhak is a survey vessel designed for coastal and deep-water hydrographic operations, while INS Agra is an anti-submarine warfare craft equipped with torpedoes, rocket launchers and sonar systems for coastal defense. Defence Minister Rajnath Singh has said that the tri-commissioning of INS Dunagiri, INS Agra and INS Sanshodhak is going to be a defining moment in India's maritime capability development. In a social media post, the minister said that these state-of-the-art platforms are a testament to the country's robust defence manufacturing ecosystem and its unwavering resolve towards Atmanirbhar Bharat. The 12th International Day of Yoga is being celebrated across India and around the world today with the theme Yoga for Healthy Aging. The theme highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. Prime Minister Narendra Modi led the nation in observing the International Day of Yoga from Kolkata's Red Road, where thousands of people joined him in performing the morning exercises. Participating in the Common Yoga Protocol session, Mr. Modi performed yoga alongside thousands of practitioners at the iconic venue. Speaking on the occasion, Mr. Modi said, June the 21st, which marks the longest day in some parts of the earth, has now become the largest community celebration day because of yoga.
3: 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है।
2: The Prime Minister said yoga is not just physical exercise and is not restricted to any age group. It is an expression of human spirit. President Draupadi Murmu was chief guest at the state-level International Yoga Day program in Jabalpur, Madhya Pradesh today. The event was held at Garrison Ground in Sadar. Meanwhile, several union ministers, organizations and eminent personalities are participating in yoga sessions across the National Capital Region to celebrate the 12th annual International Day of Yoga. Union Health Minister Jagat Prakash Nadda attended the Yoga Day celebrations at Shantipath. External Affairs Minister Dr. S. J.

0: नमस्कार, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का चैनल एफएम गोल्ड और आप हमें सुन पा रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, ये कार्यक्रम है आज के मेहमान और आज हमारे स्टूडियो में एक विशेष मेहमान हैं जिनसे बहुत सारी हम बातें करेंगे योग के बारे में। आप जानते हैं, इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में अगर आपको फिट रहना है और आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए तो आवश्यकता होती है योग की। लेकिन केवल फिटनेस ही नहीं होता है योग, इससे भी बहुत परे बहुत विशाल संसार है योग का। योग है चित्त वृत्ति का निरोध करना और बहुत सारी बातें होंगी योग के बारे में। क्यों महेश जी?
1: जी, आज जो हमारा विषय है भारतीय योग दर्शन और परंपरा। जैसा हम सभी जानते हैं कि योग एक ऐसा विषय है जिसमें भारत की देन संपूर्ण विश्व को रही है। इसी कारण से कुछ विशेष दिवस भी योग पर जो भारत ने दिए वो संपूर्ण विश्व में मनाए जा रहे हैं। आज हमारे साथ जो विशेष मेहमान स्टूडियो में उपस्थित हैं उनका परिचय हम आपसे करवा देते हैं।
0: जी, मैं इंतजार कर रही हूँ।
1: हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर राजेश राज। आप गत 35 वर्षों से भी अधिक एक शिक्षाविद के रूप में, एक अनुसंधानकर्ता के रूप में, एक वैज्ञानिक के रूप में और एक योगाचार्य के रूप में अपनी जो सेवाएं हैं वो दे रहे हैं। शिक्षा का कार्य, अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। मानव चेतना पर आपका अध्ययन प्रमुख विषयों में रहा है। इसके अलावा यौगिक जो विधाएं हैं अलग अलग, उस पर आपके बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारी शोध हैं। हॉलिस्टिक हीलिंग में आपने बहुत कार्य किया है। इंडियन माइथोलॉजी और फिलोसफी में आपका लंबा अनुभव रहा है। तो आज के जो हमारे डॉक्टर राजेश राज हैं, आपका हम रश्मि जी की तरफ से और हमारी तरफ से स्टूडियो में स्वागत करते हैं।
2: धन्यवाद, आप सब लोगों को नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ मैं योग पर वार्ता करूं और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातों को आपके सामने रखूं जो आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है।
1: डॉक्टर राजेश, आज भारतीय योग दर्शन और परंपरा इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। इस विषय को थोड़ा सा आपसे समझने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरह का जो भारतीय योग दर्शन का एक इतिहास है वो रहा है, किस तरह से ये योग हमारी जीवन शैली बना, हमारी परंपरा बना और आज हमारी धरोहर बन चुका है।
2: अगर भारतीय शास्त्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जब से सृष्टि है तब से योग विद्या है और योग विद्या प्रकृति और पुरुष के संयोग से शुरू होता है और कहीं न कहीं प्रलय तक होता है। तो इसलिए हम यूं कहें कि ये विद्या सतत या सनातन है और हम सबके जीवन में इसका कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हरेक आयाम में, हरेक पक्ष में इसका उपयोग

0: योग होता रहा है। वैदिक ग्रंथों से लेकर उपनिषदिक ग्रंथों में कई बार योग के अलग अलग स्वरूपों का वर्णन आया है, विशेष रूप से ऋग्वेद और पीछे उपनिषदों में काफी प्रयोग देखे गए हैं, लेकिन इसका विस्तृत वर्णन यदि देखा जाए तो हमें उपनिषदों में मिलता है। विशेष रूप से 20 योग के उपनिषद हैं मानक रूप से, जिसको हम कहते हैं योगोपनिषद, और इसमें योग के बारे में पूरे विस्तार से वर्णन है। जी,
1: ये जानना चाह रहे थे डॉक्टर राजेश कि आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग विद्या को आप लेकर गए हैं, और केवल भारतीय ही नहीं बल्कि जो और, क्योंकि हम तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भारतीय परंपरा है उसको मानते हैं, तो विदेशों में किस प्रकार से देखा जाता है योग को? क्योंकि इस प्रकार माना जाता है कि केवल कुछ आसन या कुछ व्यायाम या कुछ पोज समझ आ जाता है, लेकिन हमें समझ में आता है कि योग इससे कहीं परे है, इससे कहीं बड़ा है, इससे कहीं विस्तृत है, जो चेतना है उस तक को छूने की बातें होती हैं, तो ये बड़ा थोड़ा सा रहस्यमय है, इसको स्पष्ट कीजिए हमारे श्रोताओं के लिए।
0: जी रश्मि जी, देखिए योग की कई विधाएं हैं, विदेश तो मैं पीछे आता हूं, भारत में ही अगर आप देखें तो योग की कई परंपराएं हैं और अलग अलग तरीके से हमारे सिविलाइजेशंस उसको अपनाए और प्रयोग किए। जब योग धीरे धीरे भारत से बाहर फैला तो भी वहां की परंपराओं के अनुकूल, वहां के लोकाचार के अनुकूल योग फैलता चला गया। विशेष रूप से जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए और उन्होंने ज्ञान योग पर बोला तो बहुत लोगों की जिज्ञासाएं योग के प्रति बहुत बढ़ गई। उसके बाद एक से एक महानुभाव योगी हमारे देश से बाहर गए, चाहे उसमें योगानंद जी हो या अन्य कोई ऋषि, और उन्होंने योग को एक ज्ञान योग के रूप में ज्यादा से ज्यादा प्रचारित प्रसारित किया। पीछे जब कुवलयानंद के शिष्यों ने एक प्रैक्टिकल योग कि हम योग करके स्वास्थ्य को भी पा सकते हैं, ये 1940s और 50s का दशक था, जिसमें योग एक प्रैक्टिकल अप्रोच कि हम जीवन में इसको कैसे लागू करें, ये ज्ञान योग से उतर के कर्म योग में उतरना शुरू हुआ।
1: यानी साधारण व्यक्ति भी उसको अपने जीवन में आत्मसात कर सकता है।
0: जी जी, और मेडिकल साइंस ने इसको हाथों हाथ लिया। बहुत सारे ऐसी बीमारियां जो मेडिकल साइंस उस वक्त बहुत उलझन में थी, बहुत पजल्ड थी, पहेलियां बनी हुई थी, योग ने बड़े सरल आसनों और प्राणायाम के अभ्यास से उसको बहुत सहज कर दिया। इस वजह से योग बहुत तेजी से चारों ओर फैलता चला गया। और यही नहीं, जब इसके विशेष रूप से इसका ज्ञान और इसके पीछे की स्पिरिचुअलिटी जब विदेशों ने जाना देखा तो भारत की कई परंपराओं का स्वागत किया गया वहां पर। भारत से कई बड़े बड़े धार्मिक परंपराएं वहां पे गई, पूरे विदेश में गई। मैं कुछ एक दो अपना अनुभव बताऊंगा।
2: जी जी,
0: जब मैं पहली बार 2008 में मैं यूरोप गया था, उस वक्त वहां पर एक बहुत बड़े योगी वो वहां पर योग करा रहे थे, और लोगों को सामान्य रूप से ये मालूम था कि योग का अर्थ, जैसा कि आपने बताया, कि कुछ आसन कर लेना या कुछ फिजिकल प्रैक्टिस कर लेना, तो उन्हें लगता था कि ये एक फीमेल एक्सरसाइज है। मेल एक्सरसाइज मतलब जिम, जिसमें आप बहुत हैवी वर्क करते हो, और योग मतलब एक फीमेल एक्सरसाइज, इसमें ज्वाइंट एक्सरसाइज या सिंपल मूवमेंट्स होते हैं,
1: हल्का फुल्का
0: व्यायाम के रूप में लिया गया। दो दर्जन देशों में मैंने कई बार सेमिनार लिया और बताने की कोशिश की। मेरे पीछे बहुत सारे स्कॉलर्स आए और ये बताने की कोशिश की कि नहीं, आप इसको एक फीमेल एक्सरसाइज ना लो, बल्कि इससे बहुत ज्यादा लाभान्वित हो सकता है यदि इसको प्रॉपरली किया जाए। मतलब योग आपको सब कुछ दे रहा है, स्वास्थ्य दे रहा है, ये आपको अगर आप बॉडी बिल्डर होना चाहते हैं वो भी सुविधाएं हैं, और अगर यदि आप जीवन में कॉन्फिडेंस को लूज कर रहे हैं, आपका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, आपस में रिलेशनशिप इम्बैलेंस है, ऐसी कई अनेकानेक चीज जिसमें कि योग आता ही चला गया। अगर हम हेल्थ का डेफिनेशन WHO की तरफ से माने तो हेल्थ हो, चाहे फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, इमोशनल हेल्थ हो, सोशल हेल्थ हो और स्पिरिचुअल हेल्थ हो, इन पांचों एरिया को योग टच करता है। और मुझे ऐसा कोई विधा आज तक नहीं पता जो इन पांचों एरिया को टच करता हो। योग पांचों एरिया को स्पर्श करता है, इसलिए योग हमको लगता है कि पिछले 50 सालों में पूरे विश्व पे छा गया।
2: जी बिल्कुल डॉक्टर राजेश, आपने बताया कि जो योग है वो न केवल तन पर कार्य करता है बल्कि मन और आत्मा पर भी कार्य करता है। एक समग्र स्वास्थ्य की बात जो WHO की परिभाषा भी है, उसको सही मायने में योग ही, जिसे कहते हैं, जस्टिफाई करता है। आपने अभी

0: शास्त्रों की बात की, बहुत सारे उपनिषदों की बात की, लगभग 20 से ज्यादा उपनिषदों में योग का वर्णन आता है। महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र है, योग दर्शन है, उसकी विशेष चर्चा आज के समय में होती है। किस तरह से आज के समय में ये जो महर्षि पतंजलि का जो कार्य था वो आज मानव समाज के लिए लाभप्रद सिद्ध हो रहा है, इस विषय पर आप क्या कहेंगे?
1: महर्षि पतंजलि ने योग विद्या को संकलित किया। बहुत लोग कुछ गलत परिभाषा करते हैं कि ही वॉज द फाउंडर, वो फाउंडर नहीं थे, उन्होंने संकलन किया
0: जी,
1: कंपाइल किया और अलग अलग परंपराओं से उन्होंने योग के ज्ञान को और उनको सूत्रों में बना करके हमारे सामने बहुत वैज्ञानिक, बहुत मैथमेटिकली उन्होंने सामने रखा। जब मैं बहुत वैज्ञानिक और मैथमेटिकली कह रहा हूं तो उसके पीछे तर्क है। एक तो सारे के सारे सूत्र अपने आप में ऐसे फॉर्मूले हैं जो कि आपके जीवन में बहुत गहरे तक असर डालता है, इसलिए वो फॉर्मूले है। और गणित इसलिए है कि वो इस तरह से सिंक्रोनाइज्ड है कि आप एक भी सूत्र को आगे पीछे नहीं कर सकते
0: जी,
1: या हटा नहीं सकते, वो फिक्स है। 196 सूत्र है और हर एक सूत्र जैसे मानो कि एक मैथमेटिक्स का विद्यार्थी एक के बाद एक सूत्र पढ़ता जाता है और उससे बड़ा गहरा, वैसे ही उस तरह से सूत्रबद्ध है वो।
2: इसका कुछ उदाहरण अगर देंगे डॉक्टर?
1: बिल्कुल मैं दूंगा। जैसे मैं शुरुआत से ही कहता हूं कि पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। अब यहां पर जो सूत्र है वो कह रहे हैं कि योग एक ऐसा अनुशासन है जो पूर्ववत, जो पहले से चला आ रहा है। अनुशब्द का होता है जो पहले से शासित हो, जो पहले से शासित हो वो ऐसा अनुशासन। सामान्य रूप से आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये किस प्रकार का अनुशासन है, अगर कोई अनुशासन है तो किस प्रकार का है। अगला है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, ये चित्त के वृत्ति के निरोध करने का अनुशासन है। आपके मन में सामान्य सवाल उठेगा कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा। आप सवाल पूछे नहीं कि अगला उत्तर उसी सीरीज में आपको मिलेगा। तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्, तब जो है दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। और अगर अवस्थित नहीं हुआ तो क्या होगा, सवाल तुरंत उठता है आपके मन में। तो उसके बाद उत्तर भी उसी प्रकार से आप देखेंगे आगे, वो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वृत्ति के जैसा वो हो जाएगा, आपकी चेतना जो है वृत्ति जैसी हो जाएगी।
2: ये तो बहुत ही रोचक लग रहा है और मन कर रहा है कि इस पुस्तक को, मुझे लगता है श्रोता जरूर ढूंढेंगे, पढ़ेंगे, अपनाएंगे। वाकई बड़ा रोचक लग रहा है कि एक के बाद एक सूत्र निकलकर, और ये बहुत ऐसे सूत्र हैं जो कि भारतीय संस्कृति और परंपरा के हमेशा से रहे हैं, सिर्फ हम एक बार ही उनको रिविजिट कर रहे हैं, उनको दोबारा जान रहे हैं जी।
1: इसलिए मैं सभी से एक बार तो अनुरोध जरूर करूंगा कि एक बार इस पुस्तक को सामान्य रूप से पढ़ें, आपको इतना मजा आएगा आप रुक नहीं सकते। एक के बाद आपके मन में जो प्रश्न आता जाएगा उसका उत्तर आपको अगले में मिलता जाएगा। और सरल भाषा में सारी बातें उन्होंने जिंदगी की एक से अंत तक A to Z उस बुक में आपको मिल जाएगा
0: जी।
1: और मैं यहीं से मानवीय चेतना की बात, जो चित्त शब्द है उसका अर्थ है यहाँ पे चेतना, मानवीय चेतना, उसमें वृत्तियां होती है और उसका निरोध किया जाता है। ये पहले ही दूसरे ही सूत्र से प्रारंभ हो गया ये बात कि हमारे मन की वृत्तियों का निरोध करना, ये पतंजलि साहब इसको योग मानते हैं। तो फिर आप पूछ सकते हो कि भाई ये आसन फिर क्या है, फिर आप आसन क्यों करा रहे हो? अगर ये मन के वृत्तियों को ही रोक रहा है तो आसन क्यों करा रहे हो, प्राणायाम क्यों करा रहे हो? देखो, हमारे जितने भी आसन है, चाहे वो आगे झुक के आसन करना हो, पीछे बेंट होके करना हो, लेटरल बेंड होके करना हो, ट्विस्ट करके करना हो, सर नीचे इन्वर्टेड करना हो, ये जितने भी पोस्चर हैं, ये कहीं ना कहीं आपके वृत्तियों को अवरोध करता है या वृत्तियों को रोकता है। अब देखिए मैं कैसे इसका उत्तर आपको मजेदार ढंग से बताऊंगा।
2: हाँ, बिल्कुल, अगर प्रैक्टिकल हम समझेंगे तो
1: ज्यादा अच्छा रहेगा। कभी आपने देखा है कि कुछ लोग जो थोड़े इगोइस्टिक होते हैं या थोड़ा उनमें अभिमान या दम्भ या घमंड रहता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को आप देखो, वो थोड़ा ऐसे उचक करके थोड़े कंधे को हल्का सा उचका के चलेंगे, वो उनका बॉडी लैंग्वेज है। अगर हम उनको कहें कि आप आगे झुक के जैसे पश्चिमोत्तान आसन करें तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, वो नहीं कर पाएंगे। वो कहेंगे कि नहीं, आप पीछे झुकने वाला करा दो, आगे झुकने वाला तो बहुत कठिन है। आप समझ रहे हैं? देखिए, हमारा जो व्यवहार होता है, पर्सनालिटी, वो हमारे शरीर पर, हमारे बॉडी लैंग्वेज पे झलकता है, वो रिफ्लेक्ट करता है। अगर कोई बहुत धब्बू किस्म का इंसान है तो थोड़ा झुक के चलेगा, उसकी जो कंधे हैं वो 45 डिग्री का कोण बनाएगी ठुड्डी से, वो थोड़ा झुक के रहता है। वो अगर उसको कह दे पीछे बेंट होकर के करिए, तो उनको दिक्कत होगी। तो कहीं ना कहीं हम ये कहना चाह रहे हैं कि आसन आपके बॉडी लैंग्वेज को करेक्ट करती है, और जब आपका बॉडी लैंग्वेज करेक्ट होता है तो उससे जुड़ी हुई जो आपकी मानसिक आदतें हैं, जो आपका स्वभाव है, उस पर उसका सीधा सीधा असर हो जाता है।
2: यहाँ पर एक प्रश्न दिमाग में आ रहा है महेश जी मेरे भी कि ये तो आपने आसनों की बात करी, पर जो प्राणायाम है वो किस तरह से जोड़ता है, उसके बारे में बताइए। उसके बारे में भी हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से जानना चाह रहे हैं।
1: देखो, श्वास जो है ना, ये मन और शरीर का पुल है, ब्रिज है। यानी आप जैसा सोचते हो वैसा ही श्वास रिफ्लेक्ट करता है। यानी आप यदि बहुत क्रोधित हैं तो श्वास अलग तरीके से चलेगा, अगर आप बहुत शांत हैं, प्रेम पूर्ण हैं, तो अलग तरीके से श्वास रिफ्लेक्ट होगा। इस विद्या को योग में स्वर विद्या कहते हैं या स्वर योग कहते हैं। ऐसे जो विद्यार्थी या विद्वान लोग हैं वो नाक से किस प्रकार से श्वास आ जा रहा है उस पर वो गणित करते हैं कि दाएं नासिका से चल रहा है ज्यादा श्वास, या वाम नासिका से चल रहा है, या दोनों से चल रहा है। तो उसको वो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना के माध्यम से उसको समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। मानो अगर आपका बायां ज्यादा स्ट्रांगली फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब आपकी मानसिक शक्तियां प्रबल है। आप ज्यादा अच्छा चित्र बना सकते हो, अच्छी वक्तव्य दे सकते हो, संगीत गा सकते हो, कोई भी कला वो ज्यादा अच्छा कर सकते हो। वहीं अगर आपका राइट नोस्ट्रिल बहुत डोमिनेंट है तो आप मेहनत काम जैसे प्ले है, दौड़ना है, भागना है, जिसमें मस्कुलर एनर्जी है, वो आप ज्यादा कर सकते हो। अगर दोनों बराबर चल रहा है, जिसको हम सुषुम्ना कहते हैं, तो ऐसे में आपको ध्यान करना चाहिए, प्रेयर करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग श्वास को जान पाए। और यही नहीं, जो स्वर विज्ञानी है वो नाक किस कोण से हवा बाहर निकलता है, उन्होंने इतना वर्क किया, इतना मेहनत किया, उन्होंने बताया कि श्वास जो है नाक से 5 कोणों में बाहर निकलता है, और उससे ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा तत्व आपके इस वक्त शरीर में हावी है। तो अगर हम प्राणायाम करते हैं तो क्या करते हैं, हम इसको नियंत्रित करते हैं। अगर हमारे अंदर कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव है, या इस प्रकार का कोई डिप्रेशन है, सप्रेशन है, एंग्जाइटी है, नाना प्रकार की स्ट्रेसजनक बीमारियां हैं, तो इससे क्या होता है कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो धीरे से हम इन पर नियंत्रण करते जाते हैं। और यही नहीं, हम शरीर, क्योंकि ये शरीर और मन का ब्रिज है, इसीलिए इसको पकड़ने से हम दोनों तरफ को बैलेंस कर लेते हैं, शरीर को मन से बैलेंस कर लेते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के दिन में। हम लोग सोचते कुछ हैं वो कर नहीं पाते हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं, हमारी संकल्प शक्ति कमजोर होती है, लेकिन ये प्राणायाम करके आप अपने अंदर और बाहर दोनों को बैलेंस कर लेते हैं।
0: श्वास की बात आपने की, योग से और प्राणायाम से शरीर को और मन को कैसे संतुलित किया जाए, इसके बारे में आपने बहुत रोचक तरीके से ये बातें बताई। डॉक्टर राजेश, होलिस्टिक हीलिंग की एक बात आती है, मतलब योग और प्राणायाम का अगर हम आज के समय में स्वास्थ्य से जोड़ के देखें तो हीलिंग एक ऐसा शब्द है जो कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य स्वस्थ करने की दिशा में लेके जाता है। होलिस्टिक हीलिंग में आपका काफी कार्य रहा है। सबसे पहले आपसे ये समझने की हम कोशिश करेंगे कि होलिस्टिक हीलिंग की अवधारणा क्या है। क्या योग अपने आप में परिपूर्ण है एक मानव शरीर को स्वस्थ करने के लिए, या प्राणायाम की भी आवश्यकता रहती है, क्या ध्यान की भी आवश्यकता रहती है? तो ये होलिस्टिक हीलिंग किसे कहते हैं, किस तरह की अवधारणा है, और योग से हम किस तरह से इस दिशा में जा सकते हैं?
1: देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट एक जो गहरी अवधारणा है योग की, कि योग ये नहीं मानता है कि शरीर रोग का जनक है। यानी शरीर रोग का कारण नहीं है, योग विज्ञान ये मानता है कि रोग का कारण हमारा मन है।
2: अच्छा,
1: हाँ। अब देखिए, एक शब्द है व्याधि। व्याधि का मतलब होता है वी प्लस आधि, आधि का मतलब होता है कॉन्सियसनेस या इंटेलेक्ट। जब इंटेलेक्ट या कॉन्सियसनेस आपका विकृत होता है तो उसको व्याधि कहा जाता है, और यदि वो सम्यक होता है तो उसको समाधि कहते हैं। तो जो हमारा चेतना है वो दो रूपों में होता है, या तो समाधि में या तो व्याधि में। तो चलिए, समाधि तो बहुत ऊंची बात है, हम व्याधि की बात करते हैं।
0: आज के समय में व्याधि ज्यादा देखने में आती है
1: जी। तो क्या होता है कि जब हम इसको प्रज्ञा अपराध भी शब्द देते हैं, जब ऐसी कोई क्रिया करते हैं जो हमारे मनोमय कोष को कमजोर करती है, तो उसके प्रतिस्वरूप हमारा प्राण कमजोर पड़ जाता है और बीमारी हमारे प्राणों में फैल जाती है। ये बात यहां मैं नोटिस फिर से करूंगा कि बीमारी सदैव प्राण को होती है, जड़ उसका मन होता है, और उसके रिजल्ट, उसके सिम्टम्स हमें दिखते हैं शरीर पे। इसीलिए होलिस्टिक हीलिंग टर्म आया। ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें आप अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, यानी सरल भाषा में कहें तो शरीर, प्राण और मन, ये तीनों पर कार्य करता है। जहां हम आसन करके अपने शरीर को स्वस्थ करते हैं, वहीं प्राणायाम करके हम प्राणों को स्वस्थ करते हैं और ध्यान करके हम मानसिक विकृतियों को दूर करते हैं। तो इस प्रकार से ये होलिस्टिक हीलिंग एक समग्र चिकित्सा हुआ जिसमें कि हम चारों ओर से रोग को पकड़ रहे हैं और मूलतः रोग

0: की बीमारी जो मन में है उससे दूर कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक रेफरेंस दूंगा, एक साउथ इंडियन राइटर है
1: जी।
0: उन्होंने 5 वॉल्यूम में किताब लिखा कि दुनिया के हर प्रकार के रोग साइकोसोमेटिक है, जबकि विज्ञान ये मानता है कि कुछ एक रोग साइकोसोमेटिक है, लेकिन वो कहते हैं कि दुनिया के हर एक प्रकार के रोग साइकोसोमेटिक है। उन्होंने अपनी बुक में ये बताया कि आपके कौन कौन से व्यवहार या मानसिक विचार किस किस प्रकार के रोगों को उत्पन्न करती है। जैसे आप किस तरह के विचार रखते हैं जिसकी वजह से आपको कैंसर हुआ, आप किस तरह के बिहेवियर रखते हैं जिसकी वजह से आपको डायबिटीज हुआ, या जितने भी प्रकार की बीमारियां हैं उन्होंने उसको किस प्रकार के विचारधारणा या किस प्रकार की बिहेवियर आपकी है, आदतें हैं, उस पे वो आधारित है। और योग विज्ञान इसको सत्य मानता है। अगर हम जड़ से अपने विचारधारणाओं में बदलाव लाएं तो हम अमुक अमुक रोग से बच सकते हैं।
1: मुझे लगता है यही कारण है कि भारत सरकार ने आधुनिक चिकित्सा प्रणाली को और योग और आयुर्वेद को एक पुल बनाने का, सेतु बनाने का कार्य कर रहे हैं।
0: इंटीग्रेटेड मेडिसिन की जब हम बात करते हैं
1: कि हम अपनी जो भारतीय संस्कृति से दी हुई प्राचीन जो ज्ञान है उसको लेकर चलें और आधुनिक जो विज्ञान है उसको भी जोड़े चलें, ताकि समस्त मानव जाति का कल्याण हो। आपकी जो बातें हैं ये बिल्कुल ऐसी लग रही हैं कि एक थोड़ा सा अनसुनी भी है, थोड़ी जान पहचानी भी है, एक जादू जैसी बातें लग रही हैं कि वाकई हमारा मन से ही सारी व्याधियां अगर उत्पन्न होती हैं तो बहुत जरूरत है मन को जानने की। और एफएम गोल्ड में हम श्रोताओं के मन को जानते हैं, उन्हें गीत संगीत सुनवाते चलते हैं। तो मैं चाहूंगी हम इस समय कुमार गंधर्व का ये भजन सुन ले, निर्भय निर्गुण।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/vbsmumbai। विविध भारती की सुर लहरियों की खनक आ चुकी है श्रोताओं, आपके आंगन में लेकर सुरीला सफर, जहां हम और आप मिलकर गीत संगीत का ये सफर तय करते हैं। तो आज भी थोड़े खट्टे मीठे अनुभवों के साथ गुजरेगा ये सफर, सुरीला सफर। हमारे फेसबुक के श्रोताओं ने पढ़ी ली है आज की इबारत टेक्स्ट और उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस भी भेजे हैं। तो हमारे रेडियो श्रोताओं के लिए एक बार फिर आज का ये टेक्स्ट या इबारत कह लें पढ़ देते हैं। राजस्थान की वो मखमली रात, रेत में पानी सी लहर, चांदनी ने चंदा से कहा, केसरिया बालम थाने नैना में रमालूं, चल मेला देखूंगी, सोना चांदी मीनाकारी के जेवर सब खरीदूं, पहनी माथे की रखड़ी सात रंग की चुनर, तो देख बींद ने कहा खूब लगती हो, लगे होरी आई है, जहां जहां मैं जाती हूँ गुड़िया गुलाबी पत्थरों महलों की अटारी ऊंट की सवारी सब जैसे नैनों में बादल, सच इनके बिना जीना लगे, पीतल की गगरी नारी हाथ न लगाना, पानी का मोल जानती भी है, बींद बोला अरे बींदनी अरे दिले नादान, ये आरजुओं का शहर है, जो आएगा वही समझ पाएगा। तो श्रोताओ ये थी आज की इबारत या कह लें टेक्स्ट। रेगिस्तान की बेशुमार खूबसूरती को अपनी आगोश में समेटे प्रांत राजस्थान ने श्रोताओ, जहां ऐतिहासिक धरोहरों को समेटा है, वहीं यहां लगते मेले, यहां की लोक संस्कृति कला और सुंदर वन्य जीव राजस्थान के कुंदन हार की तरह हैं। तो आज राजस्थान की बातें, रेत की बातें, जी हां, जब हम रेगिस्तान की बात करते हैं तो नमक का रेगिस्तान भी है। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

रेशमा और शेरा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, और ये किन अभिनेत्री पर फिल्माया गया ये आपको बताना है श्रोताओं। और बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आए हैं आज की जो ये इबारत है उसके विषय में। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि राजस्थान की मिट्टी की सौंधी महक लोक संस्कृति की रंगत और प्रेम की मधुर चुवन को बेहद खूबसूरती से समेटे हुए है चांदनी, केसरिया बालम, रंग बिरंगी चुनर, मीनाकारी के गहने और रेगिस्तान की मखमली रात मिलकर ऐसा दृश्य रचते हैं मानो लोक रंग स्वयं शब्दों में उतर आया हो। बींद और बींदनी का सहज संवाद केवल प्रेम नहीं बल्कि उस जीवन दर्शन को भी व्यक्त करता है जहां पानी की हर बूंद, हर परंपरा और हर भावना अनमोल है। ये इबारत राजस्थान की गलियों, महलों और रेत के धोरों के बीच ले जाकर प्रेम, संस्कृति और स्मृतियों के रंगों से सराबोर कर देती है। जी हाँ, और इनके बारे में आपको लिखना भी है। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज गद्यांश हमें रेगिस्तानी रेत के टीलों की ओर ले जाएगा और उसके मखमली स्पर्श को अनुभूत कराएगा। रेगिस्तान का सर्द आसमान, मखमली रेत और उस पर चांदनी की चादर ओढ़े थिरकते पानी की लहरें, ये किसी सम्मोहन से कम नहीं। चांदी से चमकती रेत के टीलों के बीच बनी पानी की लहरें जब उठती हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद कोई मखमली कविता लिखती हो। रेगिस्तान की रातें जितनी शांत होती हैं उतनी ही मखमली। रात के सन्नाटे में जब पूर्ण चंद्रमा की किरणें पानी की सतह पर पड़ती हैं तो पानी की हर एक लहर मोती से चमकने लगती है। ऐसा लगता है मानो रेतीले समंदर में सितारों की बारात उतर आई हो। क्या ही बात है श्रोताओं। जी हाँ, बिल्कुल सही कि रेत की जो सुंदरता है और रात जो राजस्थान की होती है, रेत की रातें जो होती हैं वो बड़ी खूबसूरत होती हैं। इस बारे में हमारे एक श्रोता भी लिखते हैं, और अगर ऐसा कोई अनुभव आपके पास है, आप राजस्थान गए हैं तो वहाँ के बारे में हमें जरूर लिख सकते हैं। और रात के ही बारे में हमारे एक श्रोता लिखते हैं, रेगिस्तान में मखमली रात एक रहस्यमय मौन, साइलेंस ऑफ डिवाइन के रूप में है जहां सांसारिक कोलाहल शांत हो जाता है, जो प्रकृति के शांत, कोमल और निश्चल रूप को दर्शाता है। रेत पर पानी की लहर, हवा द्वारा बनाई गई लहरें, ईश्वर की इच्छा डिवाइन विंड के बहाव का एक रूप है जो विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य से बहते रहने की प्रेरणा देता है। ये दोनों वाक्यांश एक संकेत देते हुए प्रतीत होते हैं कि मनुष्य का मन रेगिस्तान की मखमली रात की तरह शांत होना चाहिए और रेत पर पानी की लहरों को सहजता से स्वीकार करना चाहिए। रेत कठोरता और लहर तरलता का मिलना जुलना द्वैत को मिटाकर अद्वैत की ओर ले जाता है।

बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने लिखा है। डोर फिल्म का ये गीत था करसन सरगतिया और मीर अली हुसैन की ये रचना थी, सलीम सुलेमान का संगीत था। श्रोताओं, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज के गीतों को पहचानना है, शब्दों को पहचानना है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में हमें राजस्थान के रेगिस्तान की सैर आज की इबारत करा रही है, तो गीत भी उसी के अनुसार होंगे। चांदनी ने चंदा से कहा, तू चंदा में चांदनी की सरिया बालम पिया तो उसे नैना लागे, बहुत सारे गीत इन्होंने लिखे हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं पीतल की मुरी गागरी, और भी कुछ एक गीत इन्होंने सुझाए हैं, बताए हैं, पहचाने हैं। एक और श्रोता ने दिले नादा ये गीत पहचाना है। एक और श्रोता है सोना ले जा रे चांदी ले जा रे, ये गीत सुरीले सफर में हो सकता है शामिल। एक श्रोता और लिखते हैं कि राजस्थान की खूबसूरती तब देखने को मिली जब मैं अपने परिवार के साथ जैसलमेर घूमने गया। सचमुच राजस्थान की खूबसूरती अपनी समृद्ध संस्कृति, रेगिस्तान और शाही आभूषण के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। राजस्थान के थार जैसलमेर मखमली रेत का अनुभव होता है। चांदनी रात में जब पूर्णिमा की किरणें इन रेत के टीलों पर पड़ती हैं तो ये भी सोने चांदी की तरह चमक उठती हैं। केसरिया रंग राजस्थान के शौर्य, त्याग और संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ के पारंपरिक परिधानों जैसे साफा, लहरिया और बंधेज में इस रंग का प्रयोग होता है। राजस्थानी

आभूषण अपनी बारीकी नक्काशी और भारी डिजाइनों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की महिलाएं सिर से लेकर पैर तक चांदी और सोने के गहने पहनती हैं, जिनमें रखड़ी, माथा, गला, बाजूबंद और भारी पायल प्रमुख हैं। ऐसे चांदनी रातों और मखमली रेतों पर ऊंटों की सवारी करने का अलग कौतूहल है। तो क्या आपने ऊंटों की सवारी की है तो हमें जरूर लिख भेजिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि आइए चलिए मित्रों, चलते हैं विविध भारती के सुरीले सफर में और आज दो बूंद पानी और रेशमा और शेरा के गीत की धूम होगी। तो जी हाँ, देखते हैं कि आज कौन कौन से गीत होते हैं। वैसे गीत की जहां तक बात होती है तो कविताएं भी याद आती हैं। चेतक कविता क्या आपको याद है और ये किस पर लिखी गई थी तो आप जरूर बताएं। और कौन कौन से किले आपने देखे हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट किसे कहते हैं ये भी आपको बताना है।

आप सुन रहे थे वीर दुर्गादास फिल्म का ये गीत। आपको बताना है कि ये किस की रचना थी। वैसे तर्ज थी एस एन त्रिपाठी की, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें थी, और आपको राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य भी बताना है कि कौन सा है श्रोताओं, और क्या आपने दाल बाटी चूरमा और घेवर का स्वाद चखा है, तो ये भी आप बता सकते हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज तो राजस्थानी रंग छा जाएगा, ऐतिहासिक किलों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा किले इस राज्य में मिलेंगे, शौर्य पराक्रम का जीता जागता उदाहरण है राजस्थान। ये राज्य तभी तो इसे कभी भी जीता नहीं जा सका, या फिर इस पे अलग तरीके के किले नहीं बनवाए जा सके। वैसे बहुत सारे किले हैं वैसे यहाँ पर श्रोताओं, और तमाम बहुत कुछ है, इबारत पढ़ने से पता चलता है। जी हाँ, एक और

और इसके पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया था वीर दुर्गा दास का, आपसे गीतकार पूछा था, जी हाँ आपने ठीक लिखा है, भरत व्यास का लिखा नगमा था, एस एन त्रिपाठी की तरफ से। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मैं एक महीना, श्रोता लिखती हैं कि एक महीना जोधपुर में मैं रही थी, तब जैसलमेर में घूमी थी। वहां का रहन सहन, खान पान, वहां की रंग बिरंगे बाजार ने बहुत मनमोहा था। बहुत तीखा खान पान है वहां के पकवान, घेवर मावा, कचौरी, मिर्ची पकौड़ा, गट्टे की भाजी का मजा लिया था। जी हाँ, आपने रंग बिरंगे बाजार की बात की है श्रोताओं, तो राजस्थान में आप क्या बता सकते हैं मीना बाजार कहाँ लगता है, तो आप जरूर बताएं। एक और श्रोता लिखते हैं, हम जब छोटे थे सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तब राजस्थान गए थे मामा जी की बारात में। वहां का तापमान, पानी का स्वाद, तीखे भोजन की विविधताएं, अनोखी वेशभूषा, रेगिस्तान की गर्म रेत और कुछ विशेष स्थानों की याद अब तक मन मस्तिष्क में अंकित है, जिसमें मुख्यतः चौमुंडा देवी मंदिर, पुष्कर नाथ, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर, जहाँ यहाँ कौन सा मेला लगता है, ये अगर आप जानते हैं तो जरूर बताइए, क्योंकि आपने इस मंदिर की बात की है। मंदिर के दर्शन भी किए और देवी के दर्शन किए और चमकीले पत्थर अब तक सहेज कर रखे हैं, जी हाँ आपने लाए होंगे। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं, घूमर कलबील या नृत्य, भवाई नृत्य राजस्थान के लोकप्रिय नृत्य, और दाल बाटी चूरमा, के सांगरी की सब्जी, गट्टे की सब्जी और भी बहुत से लोकप्रिय व्यंजन है यहाँ के। जी हाँ, तो क्या आप श्रोताओं राजस्थान का कोई सुंदर सा पंछी बता सकते हैं? एक और श्रोता लिखती हैं कि रेगिस्तान में मीलों तक फैले रेत के टीले जिसे धूर कहा जाता है के साथ साथ चट्टानी पथरीले मैदान भी शामिल हैं। थार में कई खारे पानी की झील भी है। सब आप ही बता दे रहे हैं श्रोताओं, तो फिर बताइए खारे पानी की कौन सी मशहूर झील है, ये भी आप बता दीजिए, जिसमें, जी हाँ इन्होंने लिखा है लेकिन मैं ये आगे नहीं पढ़ूंगी। एक और श्रोता लिखती है कि राजस्थान का सबसे प्रमुख और राज्य नृत्य घूमर है, इसे नृत्य का सिरमौर कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान में कई अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, जैसे कलबेलिया, तहताली, भवाई और गैर। राजस्थान का आधिकारिक राज्य नृत्य घूमर है, इसे राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर और राजस्थानी संस्कृति की आत्मा कहा जाता है। हालांकि राजस्थान अपनी समृद्ध संस्कृति विविधता के लिए जाना जाता है, इसीलिए यहाँ कई अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य भी प्रचलित हैं।

गीत में श्रोताओं एक दुल्हनिया हैं जिनके सर पे घूंघट है, आप क्या उन्हें पहचानते हैं? इस कलाकार का नाम आपको बताना है।

किशोर कुमार की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म राजपूत से। राजेश खन्ना और जो दुल्हन थी वो नजर आती हैं हेमा मालिनी। श्रोताओं, और इसका जवाब भी हमारे श्रोताओं ने खूब दिया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि ये जून का महीना गर्मी ही गर्मी, पसीना ही पसीना, ऐसे में विविध भारती के सुरीले सफर जैसे प्रोग्राम मन को तसल्ली देता है। आज इबारत पढ़ते हुए हमारे राजस्थान के टूर की याद आई। रेगिस्तान राजस्थान का नाम सुनते ही गर्मी महसूस हुई, लेकिन हम दिसंबर महीने में गए थे इसलिए ठंडी उतनी ही थी जितनी गर्मी के दिनों में गर्म हवा होती है। पीतल की मुरी गागरी और मंगवा दे और पीतल की मेरी मंगवा दे कहकर हमने वहां के लोकल ड्रेस में फोटो खिंचवाए। जहां लोकल ड्रेस जहां की भी हम घूमने जाते हैं वहां की तो होती है, तो इसकी अगर कोई यादें आपके पास हो तो आप हमसे बांट सकते हैं। वैसे हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि चेतक कविता क्या आपने पढ़ी है, तो इस बारे में हमें जरूर लिखें और चेतक कौन था। एक और श्रोता लिखते हैं, बींद इबारत में एक शब्द है, बींद मतलब राजस्थानी में दूल्हा। जी हाँ, और बींदनी बोलते हैं दुल्हन को। एक और श्रोता लिखती हैं कि आज सुरीला सफर में राजस्थानी छटा के बिखेरेंगी रंग, यहाँ की संस्कृति पहनावा खान पान बहुत ही शानदार है। महिलाएं आज भी हाथों में सफेद चूड़ियां पहनती हैं जो हड़प्पा सभ्यता से मेल खाती हैं। जब खुदाई हुई तो कई साक्ष्य मिले जो अब भी राजस्थान में मौजूद हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है राजस्थान की संस्कृति कितनी

0: चांदी।
1: आप सुन रहे थे ये गीत मेरा गांव मेरा देश से, जहां छोटी छोटी छतरियां दिखाई गई हैं श्रोताओं, और आशा पारेख होती हैं, धर्मेंद्र होते हैं, लेकिन राजस्थान में सबसे बड़ी एक छतरी है जो कहां स्थित है ये आपको बताना है। कुछ हमने सवाल आपसे पूछे थे सोने की मीनाकारी के और कुंदन या और भी जेवरों के, तो खास अगर बात की जाए सोने की मीनाकारी और कुंदन के जड़ाऊ जेवरों की, तो बीकानेर बड़ा ही प्रसिद्ध है यहाँ का और इन्हीं चीजों के लिए प्रसिद्ध है। वैसे लाख की चूड़ियों का भी कारोबार बहुत बड़ा होता है राजस्थान में, तो क्या इस शहर में आपने कुछ खरीदारी की है? ये लाख की चूड़ियां कहाँ मिलती हैं राजस्थान में, ये आपको बताना है। और झीलों की नगरी के बारे में हमने आपसे पूछा था, तो राजस्थान में उदयपुर कहा जाता है, लेक सिटी पैलेस, ऐतिहासिक इमारतें, जग मंदिर और तमाम चीजें आप यहाँ देख सकते हैं। और छतरी के बारे में आपको बताना है, और कठपुतली जो होती है यहाँ की बड़ी प्रसिद्ध होती है, तो कठपुतली की जब हम बात करते हैं तो सबसे प्रसिद्ध जो भारत की कठपुतलियों के नाम हैं वो आपको बताने हैं। और चेतक के बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि क्षमा चाहूंगी, चेतक की वीरता कविता श्याम नारायण पांडे की है, मैंने सुभद्रा कुमारी चौहान लिखा था, कोई बात नहीं, लेकिन चेतक के बारे में तो सभी जानते हैं और हमने भी सबने कविता पढ़ी है। चेतक महाराणा प्रताप के जो घोड़े थे, इस बारे में लिखा है हमारे एक श्रोता ने, और हल्दी घाटी का युद्ध तो सभी को याद होगा, सबने पढ़ा होगा इस बारे में, तो चेतक की वीरता का क्या कहना। एक श्रोता लिखते हैं कि हमने चेतक कविता पढ़ी है, चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। और एक और श्रोता ने लिखा है कि महाराणा प्रताप सिंह जी का घोड़ा जिसका नाम चेतक है, रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। इसके आगे इन्होंने नहीं लिखा, तो रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, इस तरह की ये कविता थी। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मेवाड़ के वीर योद्धा महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। एक और श्रोता लिखती हैं कि सूरत मेरे फ्लैट के सामने तपती नदी बहती है, सर्दियों में खास करके वहां साइबेरियन पक्षी आते हैं, चार महीना बसेरा करते हैं, हमें ये नजारा देखने का मौका हर रोज मिलता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि राजस्थान का रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान बाड़मेर और जैसलमेर के बीच स्थित है, जो दुर्लभ जीवों जैसे चिंकारा, रेगिस्तानी लोमड़ी और गंभीर रूप से लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का घर है जैसलमेर के सैम और खुरी के टीले, डेरा डालने और ऊंट सफारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सफारी की कुछ यादें हो तो आप जरूर लिखे हमें श्रोताओ। एक और श्रोता लिखते हैं कि चेतक राणा प्रताप के घोड़े का नाम था। ये कलाकार आपको पहचानने हैं, और क्या ये इस गीत की शूटिंग के बारे में आप कुछ बता सकते हैं?

हेमा मालिनी और फिरोज खान पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे धर्मात्मा फिल्म से। वैसे इस गीत की शूटिंग के बारे में ऐसा बताया जाता है कि अफगानिस्तान के रेतीले इलाकों में शूट हुई ये पहली फिल्म मानी जाती है। एक श्रोता लिखते हैं कि जोधपुर कभी जाएं तो बिना रस के गुलाब जामुन जरूर खाएं, तो ये तो नई बात पता चली है। और पीतल की मोरी गागरी इस गीत के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर राजस्थान में हम जो है वो घूमने जा रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि इन्होंने कुछ फादर्स डे के बारे में लिखा है। जी हाँ, फादर्स डे की आप सभी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज फादर्स डे के बारे में भी लिखा है। एक और श्रोता लिखती है, चेतक कविता स्कूल टाइम में पढ़ी है, चेतक राणा प्रताप का घोड़ा था, बहुत ही साहसी और फुर्तीला। ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी और अगर बोलना शुरू करें शायद अभी तो आधी ही याद होगी इन्हें। और एक और श्रोता लिखते हैं कि रेगिस्तान की मखमली रात में चांद जब रेत पर उतरती है तो केसरिया रंग में रंगा राजस्थान अपनी पूरी खूबसूरती के साथ सामने आ जाता है। और मेले की रौनक, चुनर के रंग, महल, अटारियां सबके बारे में इन्होंने लिखा है। और हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि मीना बाजार कहाँ लगता है राजस्थान में। जी हाँ, जयपुर में लगता है। और दो कठपुतलियों के बारे में हमने आपसे पूछा था जो राजस्थान की तो नहीं मानी जाती है लेकिन राजस्थान कठपुतलियों के लिए बहुत ही मशहूर है। और इस रिवाज को, इस परंपरा को हम सबको बढ़ाए रखना है, बनाए रखना है, ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये भारतीय कलाकारों की जो कलाकारी है बड़ी ही कम अब देखने में आती है। और कठपुतली

कैफी आजमी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे परवीन सुल्ताना और मैंने पुरुषोत्तम की आवाजों में दो बूंद पानी फिल्म से, जो सिमी ग्रेवाल और सखियों पर फिल्माया गया। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर कई ऐतिहासिक छत्रियां, स्मारकी गुंबद मौजूद हैं। हालांकि राजस्थान की कला संस्कृति में शेखावाटी की सबसे बड़ी छत्री सीकर जिले रामगढ़ में है माना जाता है। इसे सेठ रामगोपाल पोद्दार की छत्री के नाम से जाना जाता है। पंचकुला की छत्रियां जो है वो बड़ी ही प्रसिद्ध है। श्रोता आप इसके बारे में भी जरूर देखिए क्योंकि बहुत बड़ी छत्री है और राजस्थान की सबसे बड़ी छत्रियों में मानी जाती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि चेतक कविता मैंने पढ़ी है, चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था, बहुत शूरवीर बहादुर योद्धा थे वो। एक और श्रोता लिखते हैं कि चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था, हल्दीघाटी युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप युद्ध में थे तो चेतक खुद गंभीर रूप से घायल था, तब उसने अपने स्वामी की जान बचाने के लिए बहुत गहरी खाई में छलांग लगाई थी। एक और श्रोता ने लिखा है कि इन्होंने लिखा है पुष्कर मेले के बारे में। जी हाँ, इसके बारे में हमने आपसे पूछा भी था। पुष्कर का मेला लगता है और ब्रह्मा जी का मंदिर है यहाँ, और ये मेला बहुत अलग अलग चीजों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और जहां तक नमक के रेगिस्तान की बात हमने आपसे पूछी थी, कच्छ की रण जो गुजरात की तरफ है वो नमक का रेगिस्तान बड़ा ही सुंदर है। खासकर अगर इस जगह को आप चांदनी रात में देखेंगे तो आप को बड़ा ही अलग अनुभव होगा। ग्रेट इंडियन डेजर्ट हमने आपसे पूछा था। जी हाँ, थार का रेगिस्तान जो है राजस्थान से शुरू होता है और बहुत गुजरात, पंजाब और आगे भी फैला हुआ है, तो ये बड़ी ही सुंदर बातें हैं। और गुलाबो और शिताबो ये दो कठपुतलियां हैं, आप इनके बारे में जानते हैं तो हमें कहाँ की ये कठपुतलियां हैं।

ताजमहल फिल्म का ये गीत आपने सुना, मधुमति और हेलन का नृत्य बड़ा ही खूबसूरत इस गीत में नजर आता है श्रोताओं। और माउंट आबू जो राजस्थान का एक हिल स्टेशन है, यहाँ एक बड़ा ही सुंदर मंदिर है, आप जानते ही होंगे दिलवाड़ा टेंपल। क्या आपने ये टेंपल मंदिर देखा है तो आप यहाँ की कलाकारी के बारे में हमें बता सकते हैं, क्योंकि राजस्थान जो है वो तो कलाकारियों का शहर या प्रांत ही माना जाता है। और बहुत सारे श्रोताओं ने सांभर झील के बारे में लिखा है। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, जो मुख्य रूप से जयपुर और नागौर जिले की सीमा अजमेर के निकट पर स्थित है। और भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने यहाँ के सुंदर पंछियों के बारे में लिखा हुआ है श्रोताओं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान में मीना बाजार मुख्य रूप से जयपुर में आमेर के किले के बाहर और वर्ल्ड ट्रेड पार्क जैसे बड़े मॉल्स में स्थायी बाजार के रूप में मौजूद है। इसके अलावा राज्य भर में लगने वाले त्योहारों मेलों के दौरान समय समय पर विशेष अस्थायी मीना बाजार भी लगाए जाते हैं। यहाँ एक और इमारत है श्रोताओं, इस इमारत के नाम पर विविध भारती का एक कार्यक्रम भी है, क्या आप बता सकते हैं?

0: The India Meteorological Department, IMD, has forecast extremely heavy rainfall over sub-Himalayan Bengal and Sikkim during the day. The weather agency has predicted that Gujarat, central Maharashtra, Marathwada, Saurashtra and Kutch will witness isolated to scattered rainfall till Friday. In cricket, India A have set a target of 378 runs for host Sri Lanka A in the final match of the Tri-Nation A Series 2026 in Dambulla. After being invited to bat first, India's opening pair of Priyansh Arya and Vaibhav Suryavanshi made a promising start to the innings. Meanwhile, Vaibhav Suryavanshi smashed the fastest half-century of List A format in just 11 balls. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi emphasizes yoga's role in providing pathway from mental to physical wellness, leads the nation observance of 12th International Day of Yoga in Kolkata. Prime Minister Modi commissions 3 indigenously built Indian Navy platforms in Kolkata, says special steps being taken to enhance domestic defense production capacity. NEET UG re-examination underway at over 5,000 centers across country and 14 centers abroad amid tight security. U.S. Vice President J.D. Vance and Iranian Parliament Speaker M.B. Ghalibaf arrive in Switzerland to hold peace talks as Tehran closes Strait of Hormuz again. IMD forecasts extremely heavy rainfall over North Bengal and Sikkim today. And in cricket, India set a target of 378 for Sri Lanka in final match of Tri-Nation A Series in Dambulla. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
2: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युग चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है, जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
3: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूं। ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग

0: कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
1: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
2: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2,000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS धुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
3: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
3: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1

0: 80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि यह परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रूपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, सबके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
3: मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
1: श्री प्रधान ने बताया कि सीबीएसई के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
3: सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई के 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रूपये के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रूपये तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री विंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमरीका होर्मुज जलडमरू मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालीबफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलिबाफ शांतिवार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कहाँ लाग्यो आज केही भेडाहरू अनि हेरौँ हेरौँ आ

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ कि योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इससे अधिक लाभ मिलते हैं। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री वेंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ए ने 8वें ओवर में 2 विकेट पर 48 रन बना लिए हैं। भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Naresh Mago. Prime Minister Narendra Modi today emphasized yoga's role in providing a pathway from mental wellness to physical wellness. The Prime Minister said this while leading the nation in observing the International Day of Yoga from Kolkata's Red Road. Participating in the Common Yoga Protocol session this morning, Mr. Modi performed yoga alongside thousands of practitioners at the iconic venue.
1: Yoga keval हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है। इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है।
3: President Draupadi Murmu performed yoga at the Garrison Ground in Jabalpur, Madhya Pradesh today. Addressing the event, the President said that yoga is a celebration of India's great tradition and it has shown humanity the path to a healthy, balanced and meaningful life. Vice President C.P. Radhakrishnan also performed yoga at the Spituk Stadium in Leh, Ladakh, along with hundreds of participants. Prime Minister Narendra Modi today commissioned three indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodak and INS Agrey in Kolkata. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. Addressing the tri-commissioning ceremony, Prime Minister Modi said that today India is strengthening its entire maritime ecosystem and initiatives like Sagarmala are part of this broader vision.
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
3: Defence Minister Rajnath Singh said that the tri-commissioning of three indigenously built Indian Navy platforms is a defining moment in India's maritime capability development. President Draupadi Murmu today attended the 36th convocation ceremony of Rani Durgavati University in Jabalpur, Madhya Pradesh. On the occasion, she awarded gold medals to meritorious students from different faculties. Addressing the gathering,

आपने ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फिल्मी तराने। पहला नगमा है फिल्म आ गले लग जा से। स्वर है किशोर कुमार और लता मंगेशकर का।

लीजिए सुनिए बाल कार्यक्रम रेडियो किड्स। आज जो चर्चा के विषय हैं, योग से स्वस्थ बचपन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में विशेष ये चर्चा रहेगी। और दूसरा जो चर्चा का विषय है वो है इंटरनेशनल फादर्स डे। लीजिए सुनिए कार्यक्रम रेडियो किड्स।

0: पैसे के पीछे दौड़ रहा मन है। रोगों से पीड़ित सबका तन है। योग को तुम अपनाओ क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। और दोस्तों, शरीर और आत्मा के लिए तोहफा है योग। खुद को खुद से मिलाने का मौका है योग। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विराट मोहन शर्मा और मेरे साथ हैं
1: आपकी दोस्त प्रिशा अग्रवाल।
0: तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम जिसका नाम है
2: रेडियो प्रेस।
1: पता है विराट, भारत की भूमि ऋषि मुनि देवों की है।
0: हाँ प्रिशा, इसलिए भारतीय संस्कृति विश्व में अपनी श्रेष्ठता और महानता के लिए प्रसिद्ध है। सभी सुखी रहे की भावना को लेकर ऋषियों और मुनियों ने मानव जीवन को सुखमय और स्वास्थ्य बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं, जिसमें प्रमुख प्रयास है योग। और तुम्हें पता है, योग की कला का जश्न मनाने के लिए एक विशेष दिन की स्थापना का विचार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तावित किया था। इस पहल के माध्यम से भारतीय प्रधानमंत्री हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए इस अनोखे उपहार को प्रकाश में लेना चाहते हैं। उन्होंने सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान इस सुझाव का प्रस्ताव दिया था। अपने संयुक्त राष्ट्र के संबोधन में उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि योग दिवस 21 जून को मनाना चाहिए क्योंकि यह वर्ष का सबसे लंबा दिन है।
1: विराट, आपने मुझे और मेरे दोस्तों को बहुत अच्छी जानकारी दी है। क्या आप और जानकारी देना चाहते हो योग के बारे में?
0: हाँ हाँ बिल्कुल, जल्दी से बताओ।
1: योग का मतलब है जोड़ना, मतलब किसी अच्छे काम से अपने आप को जोड़ना। अपनी हेल्थ के लिए अपने शरीर और मन से किया गया काम होता है योग।
0: हाँ, इसलिए तो कहते हैं सुबह सुबह जो कसरत करता, सुबह सुबह जो कसरत करता जीवन में वो आगे बढ़ता। विटामिन डी की कमी पूरी होती जिस तन सूर्य की किरणें लगती। तुम्हें मालूम है प्रशा कि आजकल मनुष्य अनियमित दिनचर्या के कारण अनेक शारीरिक व मानसिक बीमारियों से ग्रस्त होता जा रहा है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को सुधारने हेतु योग की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
1: हाँ विराट, मैं अपने पापा के साथ यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाती हूँ योग करने। मैंने देखा है पार्क, बगीचों, घर की छत पर लोग योग करते हैं। लोग योग संस्थाओं, टीवी, मोबाइल से सीख रहे हैं।
0: हाँ प्रशा, तुमने बिल्कुल सही बोला। विद्यालयों में बच्चों को योग शिक्षा दी जा रही है एवं योग कराया जा रहा है। योग स्वास्थ्य की कुंजी तो है ही और यह भारतीय संस्कृति का अनुपम उपहार है। इसलिए तो कहते हैं मिलती ऊर्जा और सफूर्ती, मिलती ऊर्जा और सफूर्ती, दिन भर रहता शरीर एक्टिव। योग हमें सुंदर मार्ग दिखाता, रोगों से मिलता छुटकारा। दोस्तों, हमने योग दिवस पर तो बहुत जानकारी दे दी। चलो दोस्तों, आज हम एक मजेदार क्विज खेलते हैं जो योग पर आधारित है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपने योग ज्ञान की परीक्षा देने के लिए?
2: हाँ।
0: तो चलिए पहला प्रश्न पूछते हैं, सबसे पुराना योग कौन सा है?
3: मैं बताऊं।
4: मुझे पता है।
0: हाँ हाँ प्रशा बताओ।
1: प्राणायाम।
0: बिल्कुल सही उत्तर। दूसरा प्रश्न, भगवान शिव को किस आसन में बैठना प्रिय है?
3: मुझे पता है विराट।
0: हाँ हाँ बताओ।
3: शिव जी आलती पालती कर बैठते हैं।
0: अरे आलती पालती मारकर तो बैठते ही हैं, लेकिन उस आसन का नाम क्या है?
3: अरे हाँ याद आया, पद्मासन।
0: बिल्कुल सही उत्तर दिया तुमने, स्तुति। तीसरा प्रश्न, योग के कितने मुख्य आसन होते हैं?
1: मुझे पता है विराट।
0: हाँ हाँ बताओ।
1: योग के प्रमुख 84 आसन होते हैं।
0: बिल्कुल सही उत्तर दिया तुमने। अच्छा स्तुति, मैंने तो अब इतने सारे प्रश्न पूछ लिए, क्या तुम कुछ प्रश्न या फिर पहेलियाँ लाई हो योग के ऊपर?
3: हाँ हाँ लाई हूँ।
0: तो जल्दी से पूछो।
3: हम इतनी देर से योग की बात कर रहे हैं कि योग क्या है?
0: हाँ हाँ स्तुति, मेरे को पता है, हमारे शरीर मन और आत्मा को स्वस्थ बनाने में योग हमारी बहुत मदद करता है।
3: अगला सवाल, योग करने से क्या हासिल होता है?
4: मुझे पता है
0: आर्ची, मैं देख रहा हूँ तुमने अभी तक एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्या तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर पता है?
4: हाँ मुझे पता है विराज।
0: तो बताओ।
4: योग करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुधरती है, तनाव कम होता है और ध्यान बढ़ता है।
0: बिल्कुल सही उत्तर दिया तुमने आर्शी।
3: अगला सवाल, योग दिवस कब मनाया जाता है?
1: मुझे पता।
0: हाँ हाँ शोमचंद बताओ।
1: 21 जून।
0: तुमने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया शोमचंद। तो दोस्तों अब मैं आप सब से एक एक आसन का नाम पूछूंगा, क्या आप तैयार हैं बताने के लिए?
2: हाँ, तैयार है।
0: तो प्रिशा बताओ किसी एक आसन का नाम।
1: सूर्य नमस्कार।
0: स्तुति तुम।
3: ताड़ासन।
0: और प्रिशा कश्यप तुम।
5: प्राणायाम।
0: और आर्षी तुम किसी एक आसन का नाम बताओ।
6: त्रिकोण आसन।
0: और इतिका तुम।
7: पद्मासन।
0: अरे वाह, सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया।
3: अगला सवाल, योग करने से क्या लाभ है?
0: मैं बताऊं क्या स्तुति?
3: हाँ हाँ बताओ विराट।
0: योग करने से हमारा शरीर मजबूत और लचीला बनता है, तनाव कम होता है और हमें शांति भी मिलती है, हमें स्वस्थ और खुश रहने में मदद मिलती है, शरीर अपना रोग मुक्त करे, कपाल भाती आप रोज करें, सभी आसन योग के असरदायक, अनुलोम विलोम अति लाभदायक।
1: ऐसे दोस्तों कहते हैं योग करें हम योग करें, दूर सभी हम रोग करें, वरदान मिला जो हमको हम उसका उपयोग करें, तन मन स्वस्थ बनाता है, आलस दूर भगाता है, सदा सुखी वह रहता है जो इसको करता है।

0: यहूदियों में एक साथी आया, चलिए पूछते उनका नाम।
1: मेरा नाम इतिका है।
0: अब क्या सुनाने वाला है?
1: आज मैं हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता सुनाने जा रही हूँ।
2: तो चलिए सुनते हैं।
1: लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोता खोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोता खोर लगाता है, जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद।
0: यह तो बहुत आनंद आया सुनने में।
1: धन्यवाद।
2: तो दोस्तों, मैं आज कुछ मजेदार पहेलियां लाया हूँ। क्या तुम चाहते हो कि वो पहेलियां मैं तुमसे पूछूं?
3: हाँ, हम चाहते हैं।
2: तो पहली पहेली, बोल नहीं पाती हूँ मैं और सुन नहीं पाती, बिना आँखों के हूँ अंधी पर सबको राह दिखाती हूँ, बताओ बताओ।
1: मैं बताऊँ? हाँ, इसका उत्तर पुस्तक है।
2: बिल्कुल सही उत्तर दिया तुमने। दूसरी पहेली, 3 अक्षर का मेरा नाम, बीच कटे तो रिश्ते का नाम, आखिरी कटे तो सब खाएं, भारत के 3 तरफ दिखाएं। स्तुति, क्या तुम्हें इसका उत्तर पता है?
4: हाँ हाँ विराट, मुझे इसका उत्तर पता है।
2: तो बताओ।
4: सागर।
2: अरे वाह, तुमने भी एकदम सही उत्तर दिया। अगली पहेली, सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज्यादा है नहीं बहुत है उसका भार।
4: विराट, क्या मैं बताऊँ?
2: हाँ आरशी बताओ।
5: इसका उत्तर 4 पाई है।
2: तुमने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया आरशी। अगली पहेली, नकल उतारे सुनकर वाणी, चुप चुप सुने सभी की कहानी, नील गगन है इसको भाए, चलना क्या उड़ना भी आए। स्तुति, क्या तुम्हें इसका उत्तर पता है?
4: हाँ हाँ विराट, मुझे इसका भी उत्तर पता है।
2: बताओ फिर।
4: तोता।
2: अरे वाह, तुमने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया। अगली पहेली, ऐसा क्या है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, प्रिशा क्या तुम्हें इसका उत्तर पता है?
0: हाँ
2: हाँ हाँ बताओ।
0: सांप।
2: अरे सांप कैसे हो सकता है इसका उत्तर? सांप नहीं होगा इसका उत्तर। सोम, क्या तुम्हें इसका उत्तर पता है?
6: सपना।
2: अरे वाह सोम, तुमने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो दोस्तों, अब चलते चलते मैं आप सबसे आखिरी पहेली पूछता हूँ, देखते हैं अब इसका उत्तर कौन देता है। वह क्या है जिसका नाम ले तो टूट जाती है?
0: क्या मैं बताऊँ?
2: हाँ हाँ बताओ।
0: खामोशी।
2: अरे वाह, तुमने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया।

0: नमस्कार, मेरा नाम मन्ना शर्मा है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आज मैं पर्यावरण विषय पे एक बहुत सुंदर प्रस्तुति करने वाली हूँ। कुछ पंक्तियों में बंधा हुआ है जीवन का यह वर्णन, प्रकृति का सौंदर्य, स्वच्छ सुंदर पर्यावरण। काट कर वृक्षों को देखो, बना दिया सब रेगिस्तान, करके प्रकृति का शोषण, धरती कर दी है सुनसान। सृष्टि अंत को रोकने का कोई नहीं है निवारण, क्षण क्षण देखो नष्ट हो रहे प्रकृति और पर्यावरण। जब धूप से बदन तपा तो याद आए छायेदार वृक्ष, जब धुएं से दम घुटा तो याद आए हरे वृक्ष, जब भूख से पेट सूखा तो याद आए फलदार वृक्ष। जब ये सब याद आया है तो हे मानव, तू क्यों पछताया है? तूने ही तो अपने हाथों से ये सब विनाश पिलाया है। अब भी समय है, जाग जाओ, पेड़ न काटो, पेड़ उगाओ, पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ। धन्यवाद।
1: अब मैं चुटकुला सुनाऊं?
2: हाँ हाँ, जरूर सुनाओ।
1: इंसानों के अलग अलग ब्लड ग्रुप्स क्यों होते हैं?
2: मेरे को तो नहीं पता प्रिशा, तुम ही बता दो।
1: इंसानों के अलग अलग ब्लड ग्रुप्स इसलिए होते हैं ताकि मच्छर उनके अलग अलग खून के फ्लेवर एंजॉय कर पाए।
2: प्रिशा, मैं तो तुम्हारे चुटकुले सुन के लोटपोट हो गया।
3: अब मैं क्या एक चुटकुला सुनाऊं?
2: हाँ हाँ इतिका सुनाओ।
3: टीचर, संजू यमुना नदी कहाँ बहती है? संजू, जमीन पर। टीचर, नक्शे में बताओ कहाँ बहती है? संजू, नक्शे में कैसे बह सकती है, नक्शा गल नहीं जाएगा।
4: अब मैं चुटकुला सुनाऊं?
5: हाँ आशी सुनाओ।
4: टीचर, गोलू से, पांच में से पांच घटाने पर कितने बचेंगे? गोलू, पता नहीं मैडम। टीचर, अगर तेरे पास पांच भटूरे हैं और पांच भटूरे तुझसे मैं ले लूं तो तेरे पास क्या बचेगा? गोलू, छोले।
2: अरे वाह आरशी, तुमने तो बहुत अच्छा चुटकुला सुनाया। तुमने तो आरशी जैसे छोले भटूरों की बात करी, मेरे मुंह में तो पानी आने लग गया।
6: मेरा नाम अरहम है। आज मैं अपने पापा के लिए एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ। पापा मेरे सबसे प्यारे, लगते मुझको सबसे न्यारे, जब मैं गिरता हाथ बढ़ाते, हिम्मत देकर मुझे उठाते, खुद मेहनत दिन रात है करते, मेरे सारे सपने हैं भरते, कंधों पर जब मुझे बिठाते, दुनिया की सैर भी कराते, मेरी खुशियों का है खजाना, पापा जैसा नहीं ठिकाना, रब से बस यही दुआ है, खुश रहे पापा सदा सदा, फादर्स डे पर कहता हूँ, दिल से आपसे प्यार मैं करता हूँ, लव यू पापा।
7: जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज फादर्स डे है और आज मैं अपने जीवन के सबसे खास इंसान अपने पापा के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। कहते हैं कि माँ ममता की छांव होती है, तो पापा उस मजबूत पेड़ की तरह होते हैं जो हर धूप और हर तूफान से हमें बचाते हैं। आज सुबह जब मैंने पापा को फादर्स डे विश किया तो उनके चेहरे की मुस्कान देखकर मेरा दिन बन गया। फिर हमने साथ बैठकर बातें की, पुरानी यादों को ताज़ा किया और कुछ तस्वीरें भी खिंचवाई। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास रहा क्योंकि सबसे कीमती चीज जो मैंने पापा को दी वो था अपना समय। मैं अपने पापा के लिए कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। मेरी हर खुशी में आपका ही नाम है, मेरे हर सपने में आप ही मुकाम है, मैं जो आज मुस्कुरा कर दुनिया से मिलती हूँ उस मुस्कान के पीछे मेरे पापा का प्यार तमाम है। खुद धूप में रहकर छांव हमें दे जाते हैं, अपनी खुशियाँ भूल कर हमें हंसा जाते हैं, पिता का प्यार शब्दों में कहाँ बयां होता है, वो तो खामोशी से पूरी दुनिया लुटा जाते हैं। पापा, आपने मुझे चलना सिखाया, सही और गलत में फर्क समझाया, गिरने पर संभलना सिखाया और सपने देखने भी सिखाए। जब भी मैं घबराती हूँ आपकी एक बात मुझे हिम्मत दे देती है, कोशिश करो बेटा, तुम जरूर करोगी। आज फादर्स डे के इस खास मौके पर मैं दिल से बस इतना कहना चाहती हूँ, थैंक यू पापा मेरे लिए इतनी मेहनत करने के लिए, मेरा हर सपने को अपना सपना बनाने के लिए और हर हाल में मेरा साथ देने के लिए। आप मेरे पहले शिक्षक हैं, मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं और मेरे सबसे बड़े हीरो हैं। अंत में बस दो पंक्तियाँ, नसीब वालों को मिलता है आपके जैसा सहारा, मेरे पापा हैं मेरी दुनिया, मेरा चांद मेरा सितारा। हैप्पी फादर्स डे पापा। और दोस्तों, अगर आपके पापा आपके पास हैं तो आज उन्हें गले लगाइए और दिल से कहिए, पापा आप मेरी दुनिया हैं, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और हम मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम एक गाना साथ में गा लें।
6: हाँ ठीक है,
7: स्टार्ट करते हैं।
6: चन्ना

जय हिंद फौजी भाइयों, कार्यक्रम शौर्य गाथा में आप सभी को सुनीता सिंह का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि दोस्तों आज 21 जून है, जिसे सारा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाम से जानता है। दोस्तों, हमारे जीवन का आधार ही स्वास्थ्य है। यदि हम स्वस्थ हैं तो जीवन की हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और उत्साह के साथ कर सकते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को संतुलित आहार, पर्याप्त विश्राम और सकारात्मक जीवन शैली के साथ नियमित व्यायाम भी अति आवश्यक है। तो दोस्तों, हम रोज व्यायाम करें, स्वस्थ रहें, इसी के साथ सुनते हैं आज के कार्यक्रम का यह पहला गीत फिल्म संजू से।

दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ ही साथ आज मैं आपको ये भी बता दूं कि हर रविवार को हम आपके लिए लेकर आते हैं विशेष कार्यक्रम पहचाने कौन, जिसमें हम आपको हिंदी फिल्मों के गीत सुनवाते हैं और उस गीत से जुड़े अलग अलग सवाल भी पूछते हैं। और आपको गाने के मध्य ही हमारे व्हाट्सएप नंबर 9434711196 पर आपको अपना सही जवाब भेजना होता है अपने नाम और पते के साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं गीतों का सफर इस गीत के साथ। दोस्तों, आपको बताना है कि इस गीत के गायक कलाकार कौन है और आप अपना सही जवाब हमें भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9434711196 पर अपने नाम और पते के साथ।

जी हाँ दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे सुर मेलोडी ऑफ लाइफ फिल्म का गीत लकी अली और सुनिधि चौहान जी की आवाज में। दोस्तों, इस गीत का सही जवाब भेजा है वीर मगाम गुजरात से अजीत कुमार भावसार और प्रमिला भावसागर ने, तादुंग सिक्किम से सीमा झा और उनकी सहेलियों ने तथा उनके साथ कविता झा और नीलम कुमारी ने भी भेजा है। आपके सही जवाब के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। गीतों के सफर को आगे बढ़ाते हुए अगले गीत में आपको ये बताना है कि यह किस फिल्म का गीत है। दोस्तों, अगले गीत में आपको फिल्म का नाम बताना है। गाने के मध्य ही हमारे व्हाट्सएप नंबर 9434711196 पर अपने नाम और पते के साथ।

जी हाँ दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे फिल्म ब्रह्मचारी का गीत। इस गीत का सही जवाब लिख भेजा है राजकोट से जैमिन कुमार जैन, हेतल कृष्णा जैन, राकेश जैन ने, और वीर मगाम गुजरात से अजीत कुमार भावसार, प्रमिला भावसार ने। मुजफ्फरपुर कल्याणी चौक से अनिल कुमार यादव, पटना से अनीता सिंह और सिक्किम से सोनम डोलमा भूटिया ने। आपको सही जवाब देने के लिए बहुत बहुत बधाई और मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। गाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों सुनते हैं अगला गीत, और आपको ये बताना है कि इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक कौन थे। सवाल फिर से सुन लें कि इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक कौन थे।

दोस्तों, इस गीत के फिल्म निर्माता और निर्देशक के बारे में सही जवाब हमें फिर से लिख भेजा है वीर मगाम गुजरात से अजीत कुमार भावसार और प्रमीला भावसार ने। राजकोट से फिर से हमें जवाब सही दिखा है जमीन कुमार जैन, हैतल कृष्णा जैन और राकेश जैन जी ने। वाराणसी उत्तर प्रदेश से संजय सिंह, मीरा सिंह और उनके समस्त परिवार ने। आजमगढ़ से सोनीपुरी और बस्ती से भी सही जवाब भेजा है प्रवीण सिन्हा जी ने। आप सभी को सही जवाब देने के लिए बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलिए सुनते हैं अगला गीत, और आपको इस गीत के संगीत निर्देशक कौन है उनका नाम बताना है। सवाल फिर से सुन लें कि इस फिल्म के गीत के संगीतकार कौन हैं।

जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब हमें भेजा है सिलीगुड़ी प्रधान नगर से गीता राय, इस्लामपुर से लिख भेजा है रोशन दास और रंजीत खान ने। दोस्तों, मनोरंजन से भरे इस कार्यक्रम में हमने अलग अलग गीतों को सुना और अच्छा भी लगा। हर चीज हमें तभी अच्छी लगती है जब हमारा मन प्रसन्न हो, और मन तभी प्रसन्न होता है जब हम स्वस्थ रहें। आप सभी के स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए अब मुझे भी आज्ञा दें, जय हिंद।

0: छिसा स्टुडियो का काम अतिम ओपन वाचिसा समथिक नि
1: अरियम साक्षिंग ग अलंग तु दोला तदोसा छ का योक अरियम जुक शोंगदन का ग साक्षिंग ब अग्याप तो मुंजो सेनला अलंग साक्षिंग अरि पोंग्रेम रे का युनन का फुलफिल यनन का साक्षिंग ओरे रे लुंग छोंग शोंगदन का अग्याप तो अद कुंजो ग सेनला अलंग गोशु लिशली गोन रे न्यूज सते साक्षिंग पोंगी ओरे साक्षिंग पोंग्रे ग सिम अरि लादेत बसिंग अरि पोंकरे मुलुंग नोंग तका इतबुरुम नन रे न्यू रे chinlop agyap nong taka ari jongbu yok arim jukbu kaise rongmi mong sa rongmit rongkup song ure plongka kaisa renewed sa sakching atet arim kyong kyong ka nong nun kaisa renewed song remre thikung ajo song remre ga ari jongbu yoga sa alang अतिम त मुगुन चरे अलंग काम बेसिक अरे पोंग लोंग लाप खुद गोंग ला हुई छ का अग्याप दो फान्तो मुंजित ब अरिंग पोंग नि ग अलंग रेन्यु रेम अलंग से जोक का नोंग नन रे अरे योगा प्लोंग का योग मा नन रे मना सिरे जोंग सा फान्तो त नि दो नि ग से जोक का अलंग कै से रोंग सुक दम सा ओंग ल चोंग रेम रेन रेन्यु सोंग रेम रे सिरे जोंग सा अलंग लन सु बिनोंग शु ओरे ला कै बे का काम थोबो नो
0: along ta ong song ka lingat go gong re along after 12 abi yoga sa graduation chong lang hun chu ubitika diploma chong hun chu along ta recently ng gat gong yoga sa plong ka agyab do department chong la along plothoni yuk pongla plothoni orino mat bare abi ng gat gong re renjong lyang sa lyang kare den song re along yoga ka professionally yoga matam bu song re munin kusu lam re shuni gachen le yoga after 12 ong song rem yoga sa courses song liono to dono do along classes song mat khachola ubido an an gun mimong song kare shu linche sa ni gong re along yoga remre along ngak nak mugon sare to dono do to do satan kare to dono do mat ga chimbo sa kusilam kusilam linko ni an are remre along short term mugon sare to do sa lifelong to do sa muvot rem ajik aryam mat chetsa थोशेत सातन कारे योगा रेमडे लाइफस्टाइल का अडॉप्ट माचेसा कसे लमन लिनकोनी आलम दो गंग आलम सतेत क्वेश्चन इंक्वायरी चंग नी लो गल कसम का फेसबुक काला योगा वित्र नामी अभी इंस्टाग्राम काला योगा वित्र नामी दोनी ओबिदी का कसम आलम सम निम्बु लाभजोंग माचीसा सम नी सतेत क्वेश्चन चंग मुंचला डाउट चंग मुंचो ओबिदी का कसम रेन रेन्यू चंग नरे कसम लाइक मेसेज चंग मात खचो अरे दो कससा मेसेज काटनी
1: ji agya renew rem ga renew sa learn sat are ka yusa rong mimong sa adyor onglut nun lyonun ka ren renew song rem ga yoga sa important jane tun tim sete chani srong yoga are lom nen re renew nun sete sa fan to duk thu buni ure ka yube ka srong thobu hat buni ga alang renew rinamit rong mit rem ga atet lyang arum lom ka yu chun nun ka yube ka tadu sa sakching thoban bu ka ga tadu sa amo bu tche gongchim bu tche tre कायु बेका थोबन बका कायु थुपे आरे लमनन का रेन्यूरेम टक्ची फुसियो
0: टक्ची
1: along do ren song nun renew rinami trong mi cha thamden rem se nong mu adoni ren renew song nun renew sa thamden lom nun ka yoga sa fantorem yemten dupluk lino along do kayu srong sa rong thupe arisa sajok do ka thilung non det bu te jet nen den gan mu adoni ren song nun srong sa rong thupe arika agomat luk lino along do kayu sa rong thupe are rongjin do sin ju gong alo muduk muduk komor pun komor mu song sa umjoka rong vum puno senthup se ni gong muduk pu thamden sa thak pe plong la yum ten dup se ni mu lilung ren song sa kumden ka thupe are sa sajok pu vum sa punol are fu mu senong u

0: मांगसेवा सामिगेन सामलो संजित्रा याथुमारे को इक्ला हेपमो आघेपसंग लबछे चुरे अलनी भग्र ग्रोथ एण्ड डेभलपमेन्ट अफ लिम्बु ड्रामा इन सिक्किम याम्बे सामदाङ सुकिम सिमिखिम याथुङ लक्पा फा यामजी साम्बा मुगिफाङ लिम्बुनु निङसाइसोम लारुङबेन तोनुङलपता खेपसुमलो तेम्मुकी खेमनु केयुङबा लिगपिसाङबा खेमलाबा खेमलाम हेपमो हुक्सोगेन चिबाकाङ सेवारो आइन अङ्गा बुदासपन्धा कान्दक इङसेबुङ हिमलाम पङवा इल्लादेन पोवेन्नु थोबो सुकिम ग्रोथ एण्ड डेभलपमेन्ट अफ लिम्बु ड्रामा इन सिक्किम सामदाङ ताङबा निङसाइसोम लारुङल आदाङबा आदाङमासिमो तोनचुङचुङल पता इङ्गानु ताजेङो सुकिम सिमिखिम याथुङ लक्पा फा यामजी साम्बा सिक्साम्बा मुगिप हाङ मुरिङला निङसाइसोमदेन लागि आनिलुमो तायुङ पोखेङ वा सिक्साम्बा मुगिफाङनु ताङबा निङसाइसोम लारुङल येकबा पान्हा युङसुगेर पछिगे आदाङबा आदाङमासे खेपसुमलो सेवारो सिक्साम्बे
1: सेवारो
0: तेम्मुकी खेमनु केयुङबा खेमलाबा खेमलामाहा सिक्साम्बारे निसुमनु आलु आतिथे चुङु क्याक चेकतेसेना
1: सेवारो आङ्गा आमिङ मुगिफाङ लिम्बु मुरिङला नामदा सुखिम हि तमाबुङ पाङफे ओ सवान बोखाङबा हेकेयाङ आलु आङ्गा सुखिम सिमिक हिम यांगां याथुंलाको फायमजी सामबारे यांबक चुकनु याका
0: खेमलाबा खेमला मासिरे सिक्साम्बारे कुनिसुमनु आलु आतिथे यांबक चुकनु या खेन पानिन आघेपसुम सिक्साम्बे मुन्दुम इन पंगवाइलारेन कुबुन लरिक आकिरिक पा मासुकतेपे यम्मो मुन्दुम हेमो आकिरिक पंगवाइला पोखेंग ये बंग वाबा खोदेपे
1: पंगवाइलारे पान बा मगर मुन्दुमनु कन थंग मगर पंगवाइलाइन अनि आजुगुम आइरुम या आजेकुम आइरुम असाप्तुम आइरुम उवामेतुम आइरुम कर खेन्नु तंगदंग मुन्दुमिनाङ अनि अमपमायुप मगर पंगवाइलालेन कुबुङ कोमर पेक मगर आत्यति मुन्दुमिने पा मसुक्तेत थेङ मगर मुन्दुम सिगाङ पंगवाला पंगवाइला हेके ए इलाओ यबा यमा यमुराबाङ पामा पेलिफाङसम्मा पामा खुन्सी आबाङी लाङ मिजोबा खोमा सुक्तेत हेके मुन्दुम मिजेक्तुबा खोमा सुक्तेत कन्नु इसी गानी गर्न पाङवाइला नाङ अमकमा गर पाङवाइला ना अनि इलाओ आजोग पाओ खेन्नु तङदङ ना कना नेछी सुम्सी पाङ्लोबा पाङ्लोबा लुम्मु या इलिक खेन पाङ्लोबा पाङ्लोमा आयक आजातुम लावा खेना लुम्मु ताजिङ बुङ बाउ खेन्नु तङदङ अमकमा युग मगर पाङवाइला नाङ मुन्दुम ए पोखे एबाङ लरिकङ बाप मेले निबान मे बोंगनेन किलाबा आङ्गा कन सम्दङ बातुङ
0: सेखा सङ आखेन पानहा सपनिम चोक मन पेक मेले सिक्साम्बारे के बातु इसि मिन पाङवाइलारेन कुबुन लरिकि लरिक पाप मासुक्ते पारे सकेर अबाकु मुलाम थाइं खोदेते मुन्दुम इन लथिक हिन्दो खेदा लामे पोखे येबा कुसिङ नितेत कोये मो खेन मुन्दुम खेदाहा पाङवाइलारेन नाइबेको याकपङ्गे कापयोंगे ओ ओसिनदांग पोंलावा कलेन याथुंग पांगवाइला पोबो नुथोबो चोक महेमो आकीबा थोया या इम्पैक्ट चोगुरवा वाबे सिक्सामबे
1: कले याथुंग पांगवाइलाइन थोबो चोक मेमुग आमा मायु मगर पांगवाइलाइन थोबो चोगु चोगुर पप्पा अनि निमा सुक्तेत थेंग मगर तगीबा अनि पांगवाइला अमा मसिगर न आलोबा पांगवाइला अमा मगर यारी कुशन तारा बेगल पप्पा खोमा सुक्तेत खेनु तंगदंग पांगवाइला सापसिंगला पेगलब खेना ओ अमक मगर कल्याण थोबो रे पाना अमक मर बेग मगर कल्याण तायम्बा कल्ले तेना अमक बेग मगर इलिक कलेक्सिंग नु थोबो पोंग लब पाए खोमा सुक्ते
0: हेके रसेखा संग कन थोबो रे पान चोक मगर कप यंगे नु याक पोंगे पा मा इंटरनेशनल नु नेशनल लेवल रंग को मोनिर बांगवा इलारिन थोबो पोंग लय वा बा खुदे पारे समय बि सिक्सम बे सुकिम खामगुलाम थिसके पा के सापसिंग बा पांगवा इलारिन कुमिंग थे यामो हाट ले सापतुबा खेन पांगवा इलाइन अतिन याखफा सेन सिगंग थाबे सिक्सम बे
1: कन पांगवा इलाले पान पा मगर लंगफोंगा मेमना पांगवा इला थिक सापसिंगवे कन पद्मश्री बीबी मुरिङला सप्तुबा कन 1977 सप्सिङ पान खोमा सुक्तेत हेकेङ कनिन अनि इलिक बेम्बा अनि समिमा ओ निमा सुक्ते कन अनि लाङफोङ्गा

0: वाइलाइन
1: सेखासंग मुबा मेंबिस सोदगेंबा पद्मश्री बी मुरिंग लारे साप्तुबा थिसके प पंगवा इलारें कुमिंग शिक्षा बारें क्यूखु सेखासंग खेमलाबा खेमलामारें कोन लांगफंगा ए केरो अबा कुसिंग मेनितु कुमलाम शिक्षाबे सुखिम खामगुलाम थिसके प सामिला ई बा पंगवा इलारें कुमिंग थे पंगवा इला इछापेन हापे आलो खराकले सामिला ई बा पंगवा इला सपेक वा ओ आखेन मेवा यम्मो सुखिम खामगुलाम थक्तोबा सामिला ई बा पंगवा इला आखेन थे मेवा अबे सिक्सम्बे
0: कन सामिला इवा पंगवाइला रे पान बा मगर करेक्ट नुले तगी ठीक अनि सामिला इवा पंगवाइला खो मसुक्ते अतिनिन मिम सामिला पंगवाइला लरि मेवा अथवा खो मसुक्ते कन तंगबे 1995 ले सफसिंगेवा केसब नामभेराबा मांगयु ले गुक्लाम सफसिंगेवा क्लबा पानी खो मसुक्ते कले सबन्द मगर करकन करेक्ट नुले तांगसा परिक्पा कन सामिला इवा पंगवाइला खो मसुक्ते खेमबेला सामिला इवा पंगवाइला मेंबाते अंग सामिला पंगवाइला लरिकंग मिंगलोक मेब्रुबा खो मसुक्ते हेकेंग कल्ले वे पान पाप मगर सामिला इवा पंगवाइला रे पान पाप मगर अनि सबसक्सिगंग अमक मगर सामिला इवा पंगवाइला रे कुहेक 1995 ले पोखेसंग कलन कलेन निमा सक्निम जोकमा कोपमा सामिलाई बा पंगवाइलांग पोंग बारसा गला बा पानिन जे आलो आलो रक अनि सबसको सेरेर पेबा खोम सुक्तेत हेकेंग वे सपनले पान बा मगर निसामले येग्या मेबना लथि पंगवाइल सामिलाई बा पंगवाइला सबसिंग वा अतिनिन अंगा फे सबतुंगबा खेनु दंगदंग सामिलाई बा पंगवाइला अंगा थिग्नेचि सपिवा उवांग सबतुंग वा हेकेंग वे पा मगर कुसंग तामलिंगलेंग सबतुंग वा गला बा पान पोखे वे कर कन आलो खराग हुक हुको मेंगेत मेंजुतेवा मेंदाएवा खेले जुगले आलो कन नंग लथिक पंग सामिलाई बा पंगोइला सबसिंग चुरेंगवा लरिकंगजे आलो एपा सुख मेदेतेन थेंग मगर हुक हुको मेंजुकेवा पोंग सुख टाइमले ताइरा हेकेंग आलोबा येमिन अम मरा पिक मगर कल्यांग नमा थोबो पोंगलो बप्पा खोमा सुखते
1: सेखासंग सामिला इबा पंगवा इलारेन पंगवा इला थोबो चोक मे मो एक पनुना मे चातु किरावा कोमोलाम सिक्सम बारे यामनिङ हक्तु आब्रे सिक्सम बारे सपनिम के जोगु इसिक सपे वारेन नुना मे पंगवा इला थोबो चोक मा हे मो अके बा चात लुंग आबे सिक्सम बे
0: सपे वारेन लथिक पयम यमबा नुना मे वा करेक्ट नुले तगी एकथुंग सप सको अखेन सपे वा एकथुंग पानो मिलान लंगवा खेन सिगंग तंगबे रे इलिक मेनसंग लथिक ने छि पंगवा इला सबसिबा खोमा सुखते कन तगीनु पोखेबा मेन कन अल्लु अल्लु बा यमो यरिक खोम सुक्तेत केले जुगले सपे वारें सबसकिन या पंगवाई लाइन थोबो जोंमे मु यमबा नुनामे जातोंवा
1: सेखासंग नुबा थे आंमने बग्रा आखेन पाया पाना कुसंग सामिला सामबा मिरन सांग कुसंग इछापा मिलन सांग कुसंग पंगवाई लाख सापा मिरन सांग सपे वारे येक पनुनामे जातु किरबा पानी को मसिक सामबारे खक्तु सिक्सम्बे पंगवा इला सापमेले थीदे पान हा या मुक्सी हा निंगवा मो युंगमा रो सापमा पोंगबे मुक्सी हा इसी पंगवा इला सापमेंगरो थी पोंग खेमलाबा खेमलाम हा थेपे तंग चेकते सेना
0: पंगवा इला सापमेले करेक नुले तगी निंगवा युंगमा के बोंगबा पाना को मुक्सी हा रे पाना बातम कन्ना एक निंगवा युंगमा के बोंगबा एकदम येक पवा तगी तगी अनि सबसको पंगवाइला सबसिंगेले अनि पानो सबसिंगेले यरि बेम्बा सपे बेना मेल्ला उमे तंग सप्तबा खोमा सुपेत कर अल्लोबा येमो अम मगर मुक्सिया कल्लेन थोबो आखिर पोंगलप आफाले कनिन कुनु पोंगलप पंगवाइला रेन केलाबा पाने नंग मनारे निंगवा मिखंग इच्छा पैचा मारिम सप्तर वा अब खोमा सुपेत खेले जोगले सबसक सिगांग या पंगवाइला अनि सिगांग यहाँ बक आजोक लेबेला कले मुक्सी हारे पान ताले बेला या घेन सिगंग झाकझोक पछि हो वारे पान ताले बेला कन क्यारेक नुले तगी निङवा युङमा सारी के ये प गा निसु खेले जोगले कन्हा क्यारेक अमप मस्याङ सात मसी सारी के ये पवा
1: सेखासंग सिक्सम बारे की बात इसी मुक्सी रे नाम बे मो पंगवा इला साप मेंगरो खेन पंगवा इला साप सकिन होमेंग यंग बा पुंग बारे सकिर अबा को लन थाइन खुदेते सुकिम खामगु सिगांगलाम नानसिंग थिकपांग यकी पंग तुक्सी पातुम मिकफुल आलाम 1986 लाम 2026 मे लाबा खराकले थक्तोबा पांगवाइला सुंग आखेन मिरन्दे आं मेवा आबे थेपेतांग ओजम किबोंगवा पांगवाइला सुंग मिंगनु इच्छा पारे मिंगहा खेमलाबा खेमलामा सरंग आं चेकतेसे ना सिक्सामबे
0: कन तंगबे सिगांग आबातुम बा इसी कन तंगबे सिगांग अनि सबसक सिगांग अमक मगर खेमबा इलिक पोंगमा बन्ने इलिक कन थुकपेत पोंग बन्ने ओजम बोंग बोने कर खेम्फा मेम बोंगेवा अनि पंगवा इला रेन सबसक सिगांग म मगर करसंग आलो समन या बक जोग पारे मिजोग्रम ब थोबो बोंग लब करेक नुले तगी आलो अदांग बारे आबा तुम हेकी 1986 ले सबसिंगे ngoiबा पंगवा इला कन करेक ले

0: 미코바 담지 사쿠마 싱다바 아당바람 삽싱양웨 건 아니 캐렉누레 틱시게 빠팡와이라 숨라리파 마숙테 헤켄 켄누 에강 땡 낭그링바 만앙 캄닥 덩베 2004레 삽싱양웨 켄누 덩덩 힝만 람디코 건닌 아 라망 캄닥레 구글람 삽싱양웨 덩베 2011레 양구삽 단로티 캄닥 कनिन तंगबे 2014 ले सबसिंगेंगवे खेनु दंगदंग अम मराबे मगरा निसामले येग्या कन थिक्सि एक बा पांगवा इलासुंग सामिला इबा पांगवा इलासुंग कन अंगाई सथंगवे तंगबे 2019 ले खेनु दंगदंग अम मगरा मारे मिक्तो फुंगवामा तामलिंगे सप्तंगवे 2019 ले सिंगसिंग कोचिंग 2019 ले फुंगवामा तामलिंगे सप्तंगवे सामब्रिक 2023 रे फुंगवामा तामलिंगले सप्तंगवे खेन एगांग पांगवाइला रे हेनला 2025-24 le kan angai satungwe hekyang elamba khogyoma pangwai lasung savitra khewar guklam sapsingeba khoma sukte
1: sekhasang kup musik sambare patu isik alo kharak le thoktoba pangwai lare ming nu ichapare ming tongbe atin tongbe ojom pokheba panha yukhabre sekhasang khemlaba khemlamare kumulam ingsumwa alam bangga ningsang chuk nu alani bhagra siksambe pangwai lare hinja o pa macho ya speaking skill tonjo nu thobo chok masuktubi सिक्सम्बारे यामनिङवा इसि खेमलाबा खेमलामा हा चेकतेसेना
0: पले पंगवा इलारे इंजारेन आपामा या उन्ची पामा नाम या छ्यासंग कलेन पंगवा इलारे थोबोजुमा सुक्तु थ्याङ मागर भिंजा आफाले खुन्ची पंगवा संग लथि पंगवा इला हेकेदंग बै निदे पाओ कन पंगवा इला इलाओ मिजोग्रो म्याकपा खेन परिकले ने निदे पाओ खेले जुगले पंगवा इलारे कन हिंजारे लुमवांग तामा या हिंजानु हिंजा पंगवा इला सापमांग हिंजारे तगांग तोनमा तोमांग हिंजारे ओ नही निवा याकमांग लथि येक पवा खेले जुगले हिंजारे कन स्किल एम फोमा लागि कन पंगवा इलारेंग यो यो नुनामे जातंगवा बा गा पा मसुक्तु
1: सेखासंग कोन पानिन केवा बाई पान थ्यांगने भगर जे पंगवा इला वे नाबि मो हिंजा हाप पंगवा मा यामासी या खेन इसिक पा खेदा यामे इसिक पा उसिन दंग चोक मा पंग मासिने बरो खुंची पा मचो इनांग पुबा रे सकेर अबा को मसिक सामबारे युखु आब्रे उना येमनु कोयेमो याथुंग पंगवा इलारेन पोवेन नु थोबो आके बावा आलो पंगवा इलारेन कुवेन नु कुदेन आके बावा आबे सिक सामबे
0: उनानु आलो बा येमुवेन थोंगमाले उनायमले देंगे पातुंग सिके यरी बेंबा पंगवाइला ने सप्तम सिंगले सपे पेनमले नाबी लक उआमेत म यरी असप्तम बखो मसुकते खेनसिगंग कर खेनसिगंग याकमा गिबोंग बा पाना ट्रेजेडी रे पांता मेमि कॉमेडी रे पांता कर आनी यरी बेंबा याकथुंग सपसको ओमेत मगर अलोंग ओमेत मगर यरी बेंबा ट्रेजेडी कॉमेडी सिगंग ल आयक पखो मसुकते कर खेन सिगांग अम मगर पांगवाइला रे पाना तारा बेकले बेला यरिक परिक पांगवाइला खोमा सुक्ते आबा तुमै के सामिलाई बा पांगवाइला रे पान्ते एन्ते मेलो ड्रामा रे पान्ता हरर ड्रामा हरर ले पान्ता अकेतंग बा पाना ओ आनी मु तगी उनायम ले पान पा मगर आनी याक्थुम सबसको कन पाना मिलन मिन्दाए वे कर आलु बा यमिन अम मगर आलु बा यम थंग मगर कन पाना ल लप कन मेन पंगवाइला ग कम्फा मुर व्याप्तुम बार्स कन्नु इलिक परिपा पोङ बार्स कन्नु इलिक परिपा को मसुक्ते पार्स साप मसुक्ते पार्स केला अब पानिन कोयम मु पोङ लब खेले जुगले तगी बा यम नु अम मगर आलु बा यम मु पंगवाइला रे नमा आ सबसको आ तेन खोसुर प या लंगयोग लेर र प टाइम मु पोङ मसुक कन पंगवाइला लेङ सबस गिन थोप जों मु यम्बानु नाम जातु
1: सेखासंग कन पानिन के वाबाई पान सिक्सम्बा रे युखुबेन सिक्सम्बा आलो सुखिम सिमिकलुंग हिम याकथुंग लख हेमो यामजोबा या फा यामजि सम्बा यामबक सुख नुक्या खेपमुनि र पांगवा इला रेन यामबे सामदांथि आकिबा सखनिम हापोंग लायक पे सिक्सम्बे
0: आंगि कन युनिभर्सिटी मु सिमिक हिम मु पांगवा इला लेन लाथि यामबे पोंग कलेसिगन आंगि यारिक बेमबा पांगवा इला रेन एक्टिभिटी संग जोगुमबे पांगवा इला सापा पांगखुम सिमबे पांगवा इला चाबा पांगखुम सिमबे हेकेंग लथिक पांगवा इला रेन ओभरल लथिक सब्जेक्ट यामबे आंगि लेप नंगवा कलेन आबांगि सिलेबस पोखेंगवा खेले जोगले सुखिम सिमिगि मु पांगवा इला रेन नंग लथि आंगि टेन बिप नंग कले नाबे टेन बिप ना बना बे सिक आंगि कन सिगांग या बकंग जोगि यरे यागि गे
1: सेखासंग नुबा पान मेंबि थियांगने बगर सुखिम सिमिक लुंग हिम याकथुंग ल हेमो कन पांगवा इला रेन यामबे मथि आकिबा सखनिम पोंला या केरबा पान सामदा सिक्सम्बारे हक्तु आब्रे सिक्सम्बार लथि सेलाप वे थेवा वाने भगर सिक्सम्बारे आलुदाक ले अखेंथि पंगवाइला थक्तुबा खिसाबतुंग आबि
0: अंगा पंगवाइला साबतुंग আর

0: La so sing hiling ge dezo tashi tashi song lu di thang yam chi nga chi den jong lo pe pangin min to lerim di na ra ja ki ge na wa shu do yin nga chi lung te kang ga to gi chu se khol lo te ji na phi sam ji chu ju tu dung na du ge tha sing ge ling ge to achim ji jab le ye sa del le ndi ge na ne ji sam na sha yin thu ji chi
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को लेकर वार्ता आज स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में शुरू हो गई है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब ईरान ने कहा है कि लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया गया है। वहीं अमरीकी सेना का कहना है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस दूनागिरी, संशोधक और अग्रय राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
2: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
2: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
3: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूं, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई है और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केन्द्रों और विदेश के 14 केन्द्रों पर आयोजित की गई। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। भारत ने एफआईएच महिला हॉकी नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। आज ऑकलैंड में फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर दूसरी बार खिताब जीता। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दांबुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: हामी आकाशवाणी गान्तोकको बेलुकी प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। आजको समाजमा लागू पदार्थ दुर्व्यसन एक गम्भीर समस्याको रूपमा देखा परिएको छ, जसले हाम्रो युवा पुस्ता र परिवारलाई ध्वस्त पारिसकेको छ। यसै गम्भीर विषयलाई ध्यानमा राख्दै आजको अंकमा हामी लागू पदार्थ दुर्व्यसनको पीड़ितहरूका लागि कानूनी सेवा र लागू पदार्थ उन्मूलन योजना 2015 बारेमा विस्तृत चर्चा गर्नेछौ र यस विषयमाथि जानकारी दिन आज विशेषज्ञको रूपमा हुनुहुन्छ विद्वान अधिवक्ता लेग्देन थेन्डुप बसी। आउनुहोस् सिकार्नुहोस् यस प्रस्तुति।

0: अब सुन्नुहोस् मौसम सम्बन्धी सामान्य जानकारी। स्थानीय मौसम विज्ञान विभागबाट प्राप्त जानकारी अनुसार गान्तोक तथा वरपर क्षेत्रको अधिकतम तापक्रम 20.7 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापक्रम 18.2 डिग्री सेल्सियस अनि वर्षा 42.2 एमएम रेकर्ड गरियो। आगामी 24 घण्टाको मौसम सम्बन्धित पूर्वानुमान अनुसार आकाशमा प्राय बादल छाए हुने, साथमा बिजुली चम्कने अनि आकाशमा गर्जने, साथमा भारी वर्षा हुने सम्भावना सोही विभागले जनाएको छ। भर्खरै सुन्दै हुनुहुन्थ्यो मौसम सम्बन्धित जानकारी, सो पूरा भयो।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: TLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
0: अब सुन्नुहोस् हाम्रो भोलि बिहानी अधिवेशनमा समावेश कार्यक्रमहरूको रूपरेखा। हाम्रो बिहानी अधिवेशन सेवा प्रारम्भ हुनेछ ठिक बिहान 6:30 मंगलध्वानीको साथमा। 6:35 सुन्नुहुनेछ कार्यक्रम भक्ति प्रभात, कलाकार आशा भोसलेको आवाजमा भक्ति भजनहरू। 6:55 अनि 7 सुन्नुहुनेछ आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट समप्रसार गरी क्रमशः संस्कृत अनि हिन्दी भाषामा समाचार। बिहान 7:05 सुन्नुहुनेछ कार्यक्रम गोल्डन मेलोडीज। 7:25 सुन्नुहुनेछ आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्रबाट नेपाली भाषामा समाचार भने 7:35 कार्यक्रम प्रणाम सिक्किम। बिहान 8 अनि 8:15 आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट समप्रसार गरी सुनाउनेछौ क्रमशः हिन्दी अनि अंग्रेजी समाचार। साथै 8:30 सुन्नुहुनेछ आकाशवाणीको उत्तर पूर्वी सिलोङ केन्द्रबाट पूर्वोत्तर अंग्रेजी भाषामा समाचार। 8:40 कार्यक्रम गीतिमाला अनि 9 सुन्नुहुनेछ मुख्य समाचार। 9:02 कार्यक्रम चित्रांजली भने 10 सुनाउनेछौ मुख्य समाचार। अन्तमा 10:02 सुन्नुहुनेछ कार्यक्रम ताजे तराने अनि बिहान ठिक 10:30 हाम्रो बिहानी अधिवेशन सेवा पूरा हुनेछ। श्रोता सुन्दै हुनुहुन्थ्यो भोलि बिहानी अधिवेशन कार्यक्रमहरूको रूपरेखा, सो पूरा भयो।

श्रोता, अबको केही क्षणमा हामी सुनाउनेछौ यसै केन्द्रबाट प्रादेशिक समाचार क्रमैले नेपाली, लेप्चा अनि सिक्किमे भोटिया भाषामा। प्रतीक्षा साँच्नुहोला।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: I'm looking for a life insurance policy that has a low premium, gives a good bonus and is truly trustworthy.
5: Go for PLI.
6: Along with government employees, all professionals, graduates and diploma holders can avail the benefits of the PLI policy. PLI is backed by the trust of Postal Department. Contact your nearest post office today or log into indiapost.gov.in.
7: श्रोता, हामी आकाशवाणी गान्तोकको बेलुकी प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। श्रोता, अब प्रस्तुत छ मेरो प्रस्तुति अन्तर्गत एक रूपक, जसको विषय रहेको छ असारे रोपाई मङ्सिरे दाई। आउनुहोस् सुनौ यस रूपकलाई।

0: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए व्यापार में सुगमता, सुधारों से सशक्त होती अर्थव्यवस्था पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और डॉक्टर एसपी शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: इन द लास्ट 12 इयर्स ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज ऑलवेज एम्फसाइज्ड दैट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज वन ऑफ द मेजर प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, एंड द गवर्नमेंट हैज रिलेंटलेसली बीन वर्किंग टुवर्ड्स दिस गोल सो दैट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कैन बी डेमोक्रेटाइज्ड, मोर एंड मोर पीपल कैन बिकम अ पार्ट ऑफ द नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज, एंड ऑफकोर्स द कॉन्सेप्ट विच हैज बीन रीआइटरेटेड टाइम एंड अगेन दैट इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स मोर एंड मोर पीपल बिकम जॉब क्रिएटर्स। सो to discuss this very important topic of ease of doing business, how it has strengthened India's business framework in the last 12 years. We have two economic experts with us, Mr. Dilip Chinoy and Dr. S.P. Sharma, economic experts. A warm welcome to you on Akashvani.
2: Thank you.

0: लगता है आपको सरकार के कौन से एफर्ट्स, अगर आप टॉप टू हमें बताएं इस दिशा में जो रिफॉर्म्स परिवर्तनकारी रही हैं?
1: जी बिल्कुल, सोनू जी आपने सही बताया कि जो रिफॉर्म्स हुई हैं जो पिछले 12 वर्षों में, जिन्होंने एक बहुत मेजर ब्रेक थ्रू दी है हमारी इकोनॉमी को, हमारे मैन्युफैक्चरिंग को और हमारे ओवरऑल जो देश का जो जीडीपी है उसको आगे बूस्टअप किया है। तो सरकार का जो पहल था, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ, मेक इन इंडिया से, क्योंकि मेक इन इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बिना कुछ भी नहीं था। तो सरकार ने मेक इन इंडिया को अनाउंस करते ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, बहुत बल दिया, जिससे कि हम बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाए। अगर हम देखें कि 2014 में जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंक था वो 143 था, वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स आता था उस टाइम पे, तो जिसमें हम 143 थे, बहुत नीचे थे, मतलब लगभग जो जितनी भी इकोनॉमीज हैं, जो भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं या फिर एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, इवन के डेवलपिंग इकोनॉमीज भी हमारे से काफी ऊपर थी। तो उसके बाद सरकार ने इसके ऊपर पूरा जोर दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, तो हम धीरे धीरे करके 2020 तक जो थे 63 तक आ गए थे, हम अपना रैंकिंग जो था सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करते हुए 63 पे आए। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने अपना इंडेक्स बंद कर दिया, मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजंस। उसके बाद जो स्टेट्स ने, उन्होंने अपना ब्रैप रिफॉर्म्स चालू किए, बिजनेस रिफॉर्म्स असेसमेंट प्लान जो था, उसके बाद उसमें बहुत तेज गति से काम हुआ, स्टेट्स में एक बहुत हेल्दी कंपटीशन हुआ, जिसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक पैशन बन गया, जो लोगों में, बिजनेसेस में, सरकार में, उसमें ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्म्स हों, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो होने शुरू हो गई, जो उसके पिलर्स हैं, खास करके जो एक हम बात करते हैं कि एक फेसलेस, पेपरलेस और फिर लेसर प्रोसीजर्स एंड लेसर कंप्लाइंसेस, ये चार जो पिलर्स हैं, इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू दी है, जिसे हम आज अगर हम देखते हैं हमारे स्टार्टअप्स, जो आपने बात की कि लगभग कोई 360 स्टार्टअप्स थे, उसके बाद अभी 2,20,000 हैं। अगर हम देखें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अभी हमारा लास्ट ईयर का अगर हम उसका ग्रोथ रेट देखें तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रू मोर देन 10%, सो डबल डिजिट ग्रोथ इज कमिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये सब चीजें जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से ही हो पाई, जैसे कि हमारा जो इन्वेस्टर है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ, और जो एफडीआई आना शुरू हुआ, जो 2019-20 के बाद एक एफडीआई को ब्रेक थ्रू मिली, और अभी हम 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा क्यूमुलेटिव एफडीआई अट्रैक्ट कर चुके हैं। हमारे देश में 1 ट्रिलियन से ज्यादा का एफडीआई का एक क्यूमुलेटिव जो भंडार है वो हो चुका है, और अभी लास्ट ईयर ही हमारा एफडीआई $95 बिलियन था, तो लगभग हम, मेरे ख्याल से इसी वर्ष में हम $100 बिलियन का एक एफडीआई डेस्टिनेशन बनने जा रहे हैं। सो दिस इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ अवर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विच हैज सपोर्टेड द मैन्युफैक्चरिंग, अवर एफडीआई एंड अवर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू मूव फॉरवर्ड एंड टू बिकम मोर एंड मोर रेजिलियंट इन द ग्लोबल इकोनॉमी।
0: एब्सोल्युटली। सो मिस्टर चनॉय, डॉक्टर शर्मा हैज सो यू नो एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन दैट हाउ द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हैज बिकम द मंत्रा फॉर द पुश दैट हैज कम टू द मैन्युफैक्चरिंग sector, to the Make in India initiative of the government and the GDP growth. Would you say that the government's focus has gradually shifted from a compliance heavy system to a facilitation driven ecosystem? How do you see this basic mindset change, or you can say paradigm shift, in how the government is taking a collaborative and inclusive approach?
2: If you look at the whole ecosystem, right, earlier business was always viewed with suspicion.
0: Yes.
2: You are always seen as being a tax evader, not filing returns, you know, always evading and finding ways to circumvent the law, whatever it is. A very significant change has happened in this last 12 years, that business has been recognized. I think for the first time, the Prime Minister actually talked about businesses being responsible and contributors to the economic growth in his Independence Day speech. It's never happened before. The second thing, which is very important to actually understand in this whole context, was that there were a whole set of small things, like if you didn't file certain data under certain law, or if you did not submit a return by a certain time, it was imprisonment. So all that has gone away. A lot of that has gone away. Some things still remain. You've had two versions of the Jan Vishwas Bill, 1.0 and 2.0. So you've actually looked at this. The third thing which is there is that they've allowed self-certification.
0: Yes.
2: Right? For the common man, what does self-certification mean? It means if you're doing something, if you're applying anywhere, you can take a copy of your Aadhaar card and self-attest it. This was not possible in earlier regimes. You could take a lot of documents and self-certify them. If you were to file certain returns, initially you had to get it verified or something by someone. Now you can actually do it on yourself. The third thing is,

0: I remember very clearly for manufacturing and taking S.P. Sharma's point earlier, there were 1,947 compliances required and things to be filled by a particular company in the manufacturing sector over a period of year. Over the reforms, this is actually reduced. The same compliance was for a large company and for a medium and small company. So that is what has happened here. But I think you will see the reforms and the thing from the view of a street vendor to a large businessman.
1: Yes.
0: A medium scale person and a street vendor, because of the digitization and the bank accounts thing, has now got access to credit. This was not available earlier. So respect, trust, accessibility, and the opportunity to start a fresh business, as he mentioned, the startups.
1: Yes.
0: And as you talk about new businesses, MSMEs to grow, they've allowed that by a simple change in the definition of the MSME thing. So now MSME has got lost the fear of growing going forward.
1: Okay. So that flexibility is there, and that intent to make amendments whenever it is required, that we have been observing over the last 12 years.
0: Absolutely. And if you see, this is still work in progress. You see, we've revised 3 legal laws in the criminal space, you know, the Evidence Act, the Indian Penal Code, and the Code of Criminal Procedure have all been, and we have the BNSS and BSA, and over 12,000 laws have been scrapped, 14,000,
1: yes.
0: right? They've been
1: yes.
0: scrapped, right? These are all things which are not there. You have looked at decriminalization, which I talked about earlier. So the fear of that going out. And the most important, and you know, you started this conversation by saying, what are the 2 most important things that you've said? The first 2 most important things actually happened in 2014 and 2016, right? 2016 and 2017, right? The first one was the IBC. The insolvency code, because earlier companies could not, and the BIFR and the alternatives, they were graveyards of industry, not renegotiating kind of things. The second one, which is very important from a national perspective, which got implemented from the 1st of July 2017, was the GST, which removed multiple taxation and got it into one tax, made it very simple, and that reform is continuing. So it's been a progress. This year, for example, earlier this year, they introduced reduced GST rates on many sectors.
1: Yes.
0: And you're seeing, despite Trump tariffs, despite the war.
1: And it became a 2-slab structure, much simpler.
0: No, nearing 2 slabs, not yet 2 slabs. S.P. Sharma will differ from that. But if you look at this, there have been growth rates. You know, people thought because of the Trump tariff and because of the war, Indian growth economy will be declining. But you saw the GDP numbers come out for last year and the projections for this year, and you will see the current PMI index, it is showing growth going forward.
1: Yes.
0: So this is all a result of the reforms and the income tax assessment. All these are all positive steps there. Yes, something, always people will say something more has to be done, but that's a work in progress.
1: So Dr. Sharma, you know, we talked about how business entry has become much easier, how the permits, getting permits has become much easier. If you can throw a little bit more light on that, the National Single Window System, which has been launched, and the land records, how they have been digitized. You feel that all these digitization of the various aspects of business, they have brought in much more transparency and led to environment which is more harmonious, and there is less chances of disputes happening or corruption happening.
2: Yes, Sonoji, digital processes are very, very important for the ease of doing business, as now we are the largest digital economy. Actually, we are at the top in the world economic system, and our digital transactions are now more than 20 billion in a month. So the total number in a year becomes in more than 200 billion. So DigiLocker, I think, is a great breakthrough for these of doing business processes. As I earlier mentioned, that procedures are coming down, compliances are coming down. As Mr. Shunai mentioned, that compliances, government has removed many compliances from the system and have simplified more than 42,000 compliances during the last 4-5 years. So all these developments, like the removal of compliances and simplification of the compliances, is supporting the ease of doing business, particularly the new and young entrepreneurs to come into the system.
1: Yes.
2: Now, when I go to some classes or the MBA classes for some guest lectures, then the students talk about the entrepreneurship.
1: Mm.
2: They want to know about the opportunities existing in the promising areas of the economy.
1: Yes.
2: Now, the entrepreneurship is in their mind. They want to move forward to become entrepreneur to provide the jobs to the other people. So, this is the reflection of overall ease of doing business during the last 12 years with the many reforms starting from Make in India to the recent reform of Bhavya scheme. Like the government has provided industrial park scheme. You can develop your manufacturing plant in a single go, in a single space to move forward. That is a great example of ease of doing business.
1: Yes.
2: Like the single window system was providing the procedural breakthrough. Now this Bhavya scheme is providing the setup of business at a single space. So all these developments are supporting the economy, supporting the businesses and supporting the employment to happen for the growing young population in the country. So I'll give you some more example. Like earlier I discussed the FDI inflows in India.
1: Hmm.
2: Now the free trade agreements. These free trade agreements are becoming a major breakthrough for the Indian economy in the global economic system. We have already signed 8 free trade agreements. 9th is in process since the last 6-7 years. And these free trade agreements will become more fruitful with more and more ease of doing business.
1: Yes.
2: So as already we have undertaken many reforms for the ease of doing business, so this is the right time to move forward to become more and more strong in the global economic system with the free trade agreements with the promising economies. So this is the support of ease of doing business that the government is able to sign free trade agreements with the many competitive economies in the advanced economies.
1: Yes.
2: Like 38 economies are advanced economies in the all free trade agreement which we have signed during the last 6-7 years.
1: Absolutely.
2: With a great confidence.
1: Yes.
2: That yes, we have a strong ease of doing business. We can compete with them in the global market or even in the domestic market, as ease of doing business has created a great level playing field in the economy. So going forward, I believe now we are very much capable to move forward and to become a great player in the global economy, to compete with many countries. Like Shunai mentioned that our PMI is now at the top of the competitive economies.
1: Absolutely.
2: We are, our PMI is higher than any economy in the top 10 economies, like our services PMI, our manufacturing PMI. Even despite the such kind of headwinds at the global level, our PMI is more and more resilient in the global economic
1: system. Absolutely. So, Mr. Chanoy, जैसा कि अभी डॉक्टर शर्मा ने कहा कि हम और आपने भी कहा कि इतने हम आपदाओं से गुजरे, इतनी मुश्किल सिचुएशंस जो इंटरनेशनल लेवल पर हुई, चाहे वो पैंडेमिक हो, चाहे ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो, बट फिर भी हमारे आर्थिक मजबूती बनी रही है. मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो सरकार के फ्लैगशिप स्कीम्स रही हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया या पीएम मुद्रा योजना, जिसमें आपको एक बिजनेस शुरू करने के लिए कोलैटरल फ्री बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है, या जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन सिस्टम बनाया गया था सरकार द्वारा, इनको आप कितना कहें कि क्रांतिकारी मानते हैं, जिन्होंने सबको, जिनकी भी ड्रीम थी एक व्यापार शुरू करने की, उसे पूरा करने का एक मौका दिया.
0: सुनील जी, अगर आप देखें तो अगर एक बिजनेस शुरू करने के लिए, और आपने एसपी शर्मा से ये पूछा था कि क्या बदला है, ठीक है, तो पहला जो चीज बदला, जैसे उन्होंने समझाया कि आप घर बैठे बैठे, और आपने पूछा ऑनलाइन का, आप घर बैठे बैठे अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं, आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, आप पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं और आप टैक्सेस भर सकते हैं. तो आपका जो समय बर्बाद होता था लाइनों में खड़े हुए और ये इंटरेक्ट करने के लिए, अब वो एक बहुत कम सा हो गया है.
1: जी.
0: अगर आप देखें जो स्कीम्स जिसकी आपने बात की थी, तो ये स्कीम्स जो आपने इस 3 स्कीम्स की बात की थी ना, ये एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए है. जो आप देखें तो जो मुद्रा स्कीम है वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और उनके लिए जो छोटे छोटे अमाउंट्स जो बैंक्स में एक बहुत अविश्वसनीय होती थी, क्योंकि बैंक के लेंडिंग पोर्टफोलियो में जिसकी उनको कॉस्ट पड़ती थी उस लोन को देने के लिए, वो उनका इंटरेस्ट कवर नहीं करता था. तो गवर्नमेंट ने जब ये स्कीम एक तरीके से लागू किया, और इनमें मुद्रा स्कीम तो एक ही उस वर्ग के लिए, ठीक है, अलग अलग स्कीम जो है, स्ट्रीट वेंडर्स के लोन स्कीम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए स्कीम है, तो इस रिफॉर्म की एक खासियत है कि उन्होंने, और किसान क्रेडिट कार्ड उसको मत भूलिएगा,
1: जी जी,
0: उन्होंने पूरे जो इकोनॉमी में जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा है, लोएस्ट लेवल से लेके हाईएस्ट बिजनेसमैन एंड एफडीआई के लिए, हर कदम पे उनको क्या दिक्कत आ रही है, उनकी क्या जरूरत है, उसके लिए एक स्कीम लॉन्च किया है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जिसको कारीगर को एक लोन मिलता है अपने टूल्स को करने के लिए और एक उनको स्किलिंग करते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जनधन योजना और जो आधार और मोबाइल का जो ट्रिनिटी है, उन्होंने ग्रास रूट लेवल में लोगों की जिंदगी बदल दी है। और साथ में क्योंकि वो छोटे छोटे अमाउंट्स जो जनधन योजना में आए थे और जो करोड़ों अकाउंट्स खोले गए थे, अगर उसकी आप पूंजी जोड़िए तो वो सारा जो पूंजी है इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने के काम आई है। वो पहले तो एक अपने घर में रखी रहती थी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी सपोर्ट नहीं करती थी, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज के जमाने में 2012-13 में आप पूछें कि आप अपने बेटे को क्या बनाएंगे, तो लोग कहते थे इंजीनियर, डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट,
1: जी
0: ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का नाम ही नहीं आता था
1: जी।
0: और अगर किसी को कहते कि आप बिजनेस शुरू करें तो माँ बाप कहते कि नहीं बेटा बेटी आप मत जाओ इसमें, आप एक नौकरी करो।
3: हाँ, उपराष्ट्रपति ने योग भारत को प्राचीन परंपरा भएको उल्लेख गर्दै यसले शरीर मन र आत्मा बीच सामंजस्य कायम गर्ने बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस का अवसरमा आज नयाँ दिल्लीमा विभिन्न केन्द्रीय मन्त्रालय तथा विभागहरूले विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्। संचार मन्त्रालय अन्तर्गतको दूर संचार विभागले संचार भवनमा योग सत्र आयोजना गरेको थियो। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज लद्दाखको लेहमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस समारोहमा सहभागी हुनुभयो। यस अवसरमा उहाँले स्वस्थ सुखी र शान्तिपूर्ण समाज निर्माणका लागि योगलाई दैनिक जीवनको अभिन्न अंग बनाउन सबै नागरिकलाई आह्वान गर्नुभयो। उपराष्ट्रपतिले यो केवल शारीरिक व्यायाम मात्र नभई मानवताका लागि भारतले दिएको प्राचीन उपहार भएको बताउनुभयो। उहाँले वर्षौंको ध्यान तपस्या र आध्यात्मिक खोज मार्फत भारतका ऋषिहरूले शरीरलाई स्वस्थ, मनलाई शान्त र आत्मालाई उन्नत बनाउने समग्र योग प्रणालीको विकास गरेको उल्लेख गर्नुभयो। यस वर्षको विषय स्वस्थ वृद्धावस्थाका लागि योगको चर्चा गर्दै श्री राधाकृष्णनले स्वस्थ सेवामा भएको प्रगति र बढ्दो औषध आयुले समाजका लागि नयाँ जिम्मेवारीहरू सृजना गरेको बताउनुभयो।
4: इन्टरनेशनल डे अफ योगा इज मोर देन अ सेलिब्रेशन अफ फिजिकल एक्सरसाइज, इट इज अ रिकग्निशन अफ एन्सियन्ट गिफ्ट फ्रम भारत to the humanity. We are specially proud that the global recognition of yoga, Honorable Prime Minister Sriman Narendra Modi ji has called upon the international community to adopt a day for yoga.
3: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज कलकत्तामा स्वदेशमै निर्मित भारतीय नौसेनाका तीन युद्धपोत आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक र आईएनएस अग्रय राष्ट्रलाई समर्पण गर्नुभएको छ। यस अवसरमा उहाँले भारत जहाज निर्माण क्षेत्रमा नयाँ सोच र नवीन दृष्टिकोणका साथ अघि बढ़िरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री मोदीले हालका वर्षहरूमा केन्द्र सरकारले विभिन्न नीतिगत सुधार लागू गरेको तथा स्वदेशी निर्माण क्षमता बढ़ाउन विशेष कदम चालेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले जहाजको मरमत, सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई एउटा ठूलो राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढ़ाइएको पनि बताउनुभयो। उहाँले यी युद्धपोत भारतीय नौसेनामा समावेश हुनु भारतको उज्जवल भविष्यको संकेत भएको उल्लेख गर्दै समुद्री क्षेत्र विकसित भारत निर्माणका लागि रोजगारीको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। आगामी वर्षहरूमा लाखौं नयाँ रोजगारी सृजना हुने सम्भावना रहेको उहाँको भनाई थियो। साथै रक्षा उत्पादन सँगै रक्षा निर्यातमा पनि अभूतपूर्व वृद्धि भएको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो। समाचार आकाशवाणीबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। नीट यूजी 2026 को पुनः परीक्षा आज कड़ा सुरक्षा व्यवस्थाका बीच सम्पन्न भएको छ। परीक्षा देश का 551 तथा विदेश का 14 शहर में संचालन गरिएको थियो। यसमा 22,79,000 भन्दा बढी परीक्षार्थी सहभागिता भएका छन्। परीक्षा का लागि बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था अपनाइएको थियो। परीक्षा दिउँसो 2 बजेदेखि साँझ 5:15 सम्म संचालन भएको थियो। परीक्षा अंग्रेजी सहित 12 भारतीय भाषामा सम्पन्न भएको हो। राष्ट्रिय परीक्षा एजेन्सीले भ्रामक सूचना र कुनै पनि प्रकारको अनियमितता रोक्न सामाजिक सञ्जाल मञ्चहरूमा पनि निरन्तर निगरानी राखेको जनाएको छ। भारतले आगामी 25 र 26 जूनमा हरियाणामा ब्रिक्सको 11 ऊर्जा मन्त्री स्तरीय बैठकको अध्यक्षता गर्ने भएको छ। बैठकमा ब्रिक्सका सबै 11 सदस्य राष्ट्रका ऊर्जा मन्त्री तथा वरिष्ठ अधिकारीहरूको सहभागिता रहनेछ। बैठकमा ऊर्जा सुरक्षा तथा दिगो विकास, ऊर्जामा समान पहुँच र प्रविधि तथा नवप्रवर्तन लगायत 3 प्रमुख विषयमा विस्तृत छलफल गरिनेछ। यो बैठकले विकासशील राष्ट्रहरूको प्राथमिकतालाई अघि बढ़ाउन तथा समावेशी विश्वव्यापी ऊर्जा भविष्य निर्माणमा योगदान पुर्याउने दिशामा भारतका लागि महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राविधिकरण CCPA ले खाद्य उत्पादन सम्बन्धी विज्ञापनमा 100% भन्ने शब्द प्रयोग गरी भ्रामक प्रचार तथा अनुचित व्यापार अभ्यास गरेको ठहर गर्दै स्टोरिया फूड्स एण्ड ब्रेभरेज प्राइभेट लिमिटेड र वेक्टर फूड स्पेसलाइज लिमिटेड दुवै कम्पनीलाई 1,00,000 रूपियाँ जरिवाना गरेको छ। प्राधिकरणले दुवै कम्पनीलाई आफ्ना उत्पादनको प्याकेजिङ वेबसाइट तथा सबै डिजिटल प्लेटफर्मबाट यस्ता दावी तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको छ। CCPA-ले 100% भन्ने शब्द सटीक र पूर्ण संख्यात्मक अभिव्यक्ति भएकाले यसलाई लापरवाहीपूर्वक अनुमानका आधारमा वा केवल बजार प्रवर्धनको नाराका रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ। मौसम विभागले आज पश्चिम बंगालको तराई क्षेत्र र सिक्किममा मुसलधारे वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ। विभागका अनुसार असम र मेघालयका केही स्थानमा पनि भारी वर्षा हुने सम्भावना छ। अरूणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, नागाल्याण्ड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिसा, तामिलनाडु, पुदुचेरी र कराईकलमा पनि मुसलधारे वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपल्ट। राष्ट्रपतिले जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालयको 36 दीक्षान्त समारोहमा सहभागी भई उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गर्नुभयो स्वर्ण पदक। प्रधानमन्त्रीले आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णनको योग सम्बन्धी लेख साझा गर्नुभएको छ। नीट यूजी 2026 को पुनः परीक्षा कड़ा सुरक्षा व्यवस्थाका बीच भएको छ सम्पन्न। अनि भारतले आगामी 25 र 26 जूनमा हरियाणामा ब्रिक्सको 11 ऊर्जा मन्त्री स्तरीय बैठकको गर्ने भएको छ अध्यक्षता। आकाशवाणीबाट सुन्दै हुनुहुन्थ्यो समाचार पूरा भयो।
5: गान्तोकको बेलुक प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। यसका साथै एफएम कञ्जनजंघा 103 मेगाहर्ज अनि मोबाइल एप न्यूज अन एयर मार्फत पनि हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, अब प्रस्तुत छ हजुरहरूकै पत्रमा आधारित मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम हिन्दी अनुरोध संगीतको। आकाशवाणी गान्तोक सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत तथा न्यानो अभिवादन जनाउँदै प्रस्तुत छ यो पहिलो गीत। चलचित्र अकेले हम अकेले तुमबाट कलाकार उजित नारायणको स्वरमा, र यस गीतको निम्ति हामीलाई पत्रचार गर्नुभएको छ सुमिन साङखोला पूर्व सिक्किमबाट दिनेश छेत्रीज्यूले, र उहाँले फादर्स डेको अवसरमा यो गीत आफ्नो बाबालाई सुनाउन चाहनुभएको छ। त आउनुहोस्, सिक्वानुहोस् यो पहिलो प्रस्तुति।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रे शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
1: आईएनएस विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूं। ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से दो स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देशभर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रूपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
3: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, नफ के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या 0 सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62 करोड़ 42 लाख रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने की 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमरीका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमरीका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई 6 अरब डॉलर की धनराशि ईरान को वापस दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारतीय नौसेना का स्टील्स फ्रिगेट आईएनएस तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरूणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्वकप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सम्पन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरूणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: रहमान मियां, रहमान मियां है।
1: कौन है?
0: रहमान मियां के नाम कचहरी से नोटिस आया है।
1: रहमान चौपाल की तरफ गए थे, आते ही होंगे।
2: किसे पूछते हैं सरकार?
0: रहमान मियां के नाम कचहरी का नोटिस है। क्या तुम ही हो रहमान?
2: जी हाँ जमादार साहब, क्या लिखा है इसमें आप ही बता दें।
0: वीर बाहू सिंह जिमीदार साहब ने इजाफा लगान का दावा दायर किया है। तुम्हें पेशी पर पहुंचना है कचहरी में इसी महीने की 25 तारीख को।
2: जी बहुत अच्छा।
0: अभी 3 हफ्ते हैं, और हाँ ये लो दस्तखत कर दो, ये लो कलम।
2: जी रहमान बकलम खुद, ये लीजिए।
0: खूब, तुम तो पढ़े लिखे मालूम होते हो।
2: बस इतनी ही उर्दू आती है जनाब।
0: अच्छा तो मैं चलता हूँ,
2: कुछ देर सुस्ता लीजिए, शरबत पीकर जाइएगा।
0: नहीं नहीं, अभी मैं जल्दी में हूँ, 2-3 और गांव के संबंध भी देने।
2: सलाम जमादार साहब।
0: सलाम।
1: अब तुम वकील करोगे बेटा?
3: और कर ही क्या सकता हूँ अम्मा, इधर फसल खराब हो गई, उधर से ये खर्चांग पड़ा है।
1: इतने रुपए कहाँ से लाओगे?
3: कुछ न कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा अम्मा।
1: बहू से पूछ देखो, शायद उसके पास कुछ रुपए निकल आए।
4: अम्मा मेरे पास 4 चूड़ियाँ थी, वो पिछले साल लगान अदा करने के वक्त गिरवी चली गई। उधार ले लूँ ना कहीं से?
2: उधार किससे ले लूँ, महाजन ज्यादा सूद लेते हैं, जमानत भी लेते हैं।
4: घर में ले देकर ये 2 बैल है,
2: बैलों के बगैर किसान क्या खेती करेगा?
4: फिर इस गाय ही को?
1: बहू
3: तुम जानती हो मुझे जान से भी बढ़कर है।
4: तो फिर करोगे क्या?
3: कुछ तो करना ही होगा।
4: या अल्लाह।

0: वाला ने क्या कहा?
1: कर्ज की मियाद खत्म हो गई थी अम्मा, अपने रुपए तलब कर रहे थे।
0: सख्त सुस्त नहीं कहा?
1: नहीं नहीं अम्मा, लाला खानदानी आदमी है, मेरे कहने पर एक साल की मोहलत और देती है।
0: बेटा, मेरी वजह से तुम बहुत बर्बाद हो गए।
1: नहीं माँ, बिल्कुल नहीं।
0: खुदा तुम्हें बरकत दे, अब मेरा वक्त आ गया, गम न करना।
2: अम्मा
0: बेटा,
2: अम्मा आप जी छोटा ना करें, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी।
0: नहीं नहीं बहू, अब और ज्यादा दिन बोझ नहीं, अब बोझ नहीं बनना चाहती।
1: एक और पानी पी लो अम्मा, जी संभल जाएगा। ये लो अम्मा, पानी पी लो।
0: तुम रोने मेरी
1: अम्मा।

0: सलाम हुजूर।
1: तुम क्या करने आए हो?
0: क्यों मेरे पीछे पड़े हो?
1: मुझे इस वक्त बातचीत करने की फुर्सत नहीं है।
0: अच्छा सरकार, मैं फिर आऊंगा सरकार, मैं फिर आऊंगा।
1: अरे सुनो
0: जी,
1: जाते कहां हो?
0: सरकार,
1: कैसे आए थे? क्या कुछ काम था?
0: नहीं सरकार, ये सलाम करने आया था हुजूर।
1: फारसी की एक कहावत है रहमान, किसान बिना मतलब के सलाम नहीं करता। क्या मतलब है कहो?
0: हुजूर, अम्मा।
1: क्या, तुम्हारी अम्मा?
0: हुजूर, आज तीसरा दिन है।
1: रो मत, रोने से क्या फायदा है, सब्र करो। ईश्वर को जो मंजूर था वो हुआ।
0: हुजूर, कुछ अर्ज करने आया हूं पर हिम्मत नहीं पड़ती। हुजूर,
1: कहो क्या बात है?
0: हुजूर, अम्मा के दफन कफन का इंतजाम पड़ोसियों से उधार लेकर किया। अब अल्लाह जानता है कहीं से एक पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है हुजूर। और काम कुछ ऐसा आन पड़ा है हुजूर कि ना करूं तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा हुजूर।
1: ऐसा क्या करना चाहते हो
0: हुजूर? अम्मा की रूह की राहत के लिए फातिहे की जरूरत है, कब्र बनवानी है, बिरादरी का खाना करना है, गरीबों को खैरात देनी है, कुरान की तलावत।
1: जब रुपए हाथ में आए ये काम तब कर लेना।
0: सरकार, बिरादरी में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं बहुत मजबूरी में आपके पास आया हुजूर। जिंदा रहूंगा तो एक एक कौड़ी मैं सूद की अदा कर दूंगा हुजूर। इस घड़ी ना ही ना कीजिएगा सरकार, ना ही ना कीजिएगा।
1: तुम्हें कितने रुपए की जरूरत है
0: हुजूर? सरकार, 200 मिल जाए तो काम चल जाएगा।
1: देखो रहमान, रुपए तो तुम्हें दे देता हूँ
0: सरकार,
1: लेकिन इस बार वादे पर न लौट आए तो मैं जरा भी रियायत नहीं करूंगा।
0: अल्लाह ने चाहा तो मियाद के अंदर आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा हुजूर। कौड़ी कौड़ी,
1: यहाँ दस्तखत करो।
0: आपकी बहुत मेहरबानी है।
1: ये लो कलम।
0: बहुत मेहरबानी है रहमान बकलम खुद, ये लीजिए हुजूर। अच्छा हुजूर, अब चलो। सलाम हुजूर।
1: सलाम।
0: सलाम।
2: अगले हफ्ते अम्मा को गए हुए 2 बरस हो जाएंगे।
3: अम्मा होती तो इस बार की ऊख देकर कितनी खुश होती।
2: अल्लाह के फजल से ऐसी ऊख लगी है कि हाथ ही भी घुसे तो समा जाए।
3: अरे, तुमने कलेजा तोड़कर मेहनत भी तो की है, दिन को दिन और रात को रात ना समझा।
2: अरे मैंने ही क्या, तुम और दोनों लड़के भी तो जी जान से लिपट गए थे।
3: सुनो।
2: हाँ बोलो।
3: अब की लाला का कर्जा चुक जाएगा?
2: अब की ज्यों ही गुड़ के रुपए हाथ में आए सब के सब ले जाकर लाला दाऊ दयाल के कदमों पे रख दूंगा।
3: ऐसे कितने रुपए मिल जाएंगे?
2: अरे हारे दर्जे 700 तो कहीं नहीं गए। लाला चाहेंगे तो उसमें से 2-4 रुपए निकाल कर दे देंगे तो ले लूंगा, नहीं तो अब की साल और चूनी चोकर खाकर काट लूंगा।
3: लेकिन वादे की मियाद तो अगले हफ्ते पूरी हो जाएगी ना?
2: अरे उन्हें ऊख की खड़ी फसल के बारे में बताकर गुड़ बिकने तक की मोहलत मांग लूंगा।
3: अल्लाह करे फसल सही सलामत गुड़ साल में आ जाए।
2: हाँ कहावत भी है, खेती की हालत यतीम बच्चे की सी है, पानी और हवा मुआफिक हुए तो अनाज के ढेर लग गए, और अगर इनकी मेहरबानी ना हुई तो लहलहाते खेत बेवफा दोस्त की तरह दगा दे जाते हैं।
3: और फिर ओला पाला सूखा बाढ़ दीमक आंधी से बची तो खलिहान में आती है।
2: और खलिहान से आग और बिजली दोनों का ही बैर है।
3: बस ये समझ लो कि इतने दुश्मनों से बची तो फसल,
2: नहीं तो
3: फैसला।

0: Rahman, le e dodëm të bilegane laka, ka la.
1: Va, va, Rahman, ab këtë rjo bëri këni uti e bëjja.
0: Bas kisan ki nëhnët ka phal të fësali e bëjja.
1: Ije to sëche, kaka, mehnët në Rahman ki taraf se kasar nëhi hoi.
0: Tab dekh hi lo, kaisi jordar ukh hai.
2: Ye lo, tum bhi do chaar dam laga lo, bhaiya.
1: Lao, bhaiya, lao.
0: Bhaiya, tum bata sako, ye kitne ki fasal hai?
1: Ukh to bhari hai. Bahut gul niklega. Bhaiya, main to samjhu hu 800 ka bik jayega.
0: पर मंडी में नया गुड़ पहुंचते ही भाव गिर जाते हैं, ये मुश्किल है।
1: अरे कम से कम 700 750 तो कहीं नहीं गए।
0: तुम ठीक कहते हो भैया, ठीक कहते हो।
1: आज बड़ी ठंडी हवा चल रही है रहमान।
0: अगहन है, अब ठंड न पड़ेगी तो कब पड़ेगी। मैंने इसी मारे ऊप के सूखे पत्तों की आग जला ली थी।
3: चिलन ताजा करने के काम भी किया है।
0: तुम ठीक कहते हो काका।
3: अरे अरे क्या कर रहा है रहमान, आपको मत छोड़।
1: अरे अरे हवा से जलता हुआ पत्ता उड़ गया। अरे कम वक्त ऊप के बीचों बीच गिरा है। अरे सत्यानाशी, तूने काहे को आग जलाई ऊप के पास?
2: अरे खेत में लग गई। अरे इसे बुझाओ किसी तरह से। अरे उधर तो ऊप तोड़ने दे।
1: अरे सारे ऊप पर घर में तोड़ने का दे बाहर होगा। आग यही तो बढ़ रही है। चलो जल्दी करो, देख क्या कर रहे हो।
2: अरे अशोक
1: रहमान भैया, रहमान भैया सब्र करो। उसकी मर्जी के आगे किसकी चली।
0: जो होना था हो गया। किस बुरी तरह हो गया।

0: ये तो लाला का चपरासी आ रहा है। अब क्या होगा? खुदा, अब तू ही इस मुसीबत को आसान कर, कहीं आते ही आते गालियां न देने लगे। जा मेरे अल्लाह, कहां चुप जाओ, कहां चुप
1: जाओ। रुपए लेकर देना नहीं चाहते? मियाद कल गुजर गई। जानते हो सरकार को एक दिन की भी देर हुई और उन्होंने नालिश ठोकी, बेभाव की पड़ेगी।
0: यहाँ का हाल तो देख रहे हो ना भैया।
1: अरे ये हाल हवाल सुनने का काम नहीं है, ये चकमे किसी और को देना। 700 रुपए ले चलो और चुपके से गिनकर चले आओ। हाँ
0: देखते हैं जमादार साहब, सारी भूख जल गई, नहीं तो अल्लाह जानता है कि कौड़ी कौड़ी बेबाक कर देता।
1: मैं ये कुछ नहीं जानता, तुम्हारी ऊख का किसी ने ठेका नहीं लिया। अब चलो, सरकार बुला रहे हैं।
0: मेरा हाथ छोड़ दो भैया।
1: अरे चल,
0: मुझे मत
1: गा। अरे चल चल,
0: मैं खुद चल रहा हूँ।
1: है या मैं? चल चल चल चल चल चल।
0: हुजूर मुझे बचाइए, मुझे बचा लीजिए हुजूर।
2: अरे ये क्या करते हो? मेरे पाँव मत पकड़ो, छोड़ो।
0: मुझे अब इन्हीं कदमों का सहारा है हुजूर। खुदावन, बड़ी विपत पड़ी हुई है, अल्लाह जानता है कहीं का नहीं रहा हुजूर, कहीं का नहीं रहा।
3: क्या सब ऊख चल गई?
0: सरकार, जैसे किसी ने खेत में झाड़ू लगा दी हो। सारे गांव से बढ़कर ऊख लगी हुई थी सरकार। गरीब परवर, ये गैबी आफत ना पड़ी हुई होती तो हुजूर से उरीन हो जाता।
3: अब क्या सलाह है, देते हो कि नालिश ही कर दूं?
0: हुजूर मालिक है, जो चाहे करे। मैं तो इतना ही जानता हूँ, हुजूर के रुपए सर पर हैं और मुझे कौड़ी कौड़ी देनी है। अपनी सोची नहीं होती हुजूर। दो बार वायदे किए, दोनों बार झूठा पड़ा। अब वायदा नहीं करूंगा हुजूर। अब जो कुछ मिलेगा लाकर हुजूर के कदमों में रख दूंगा। मेहनत मजदूरी से पेट और तन काट कर जिस तरह होगा आपके रुपए भरूंगा हुजूर, आपके रुपए भरूंगा।
3: तुम्हारे मन में इस वक्त सबसे बड़ी आरजू कौन सी है?
0: यही हुजूर कि आपके रुपए अदा हो जाएं। सच कहता हूँ हुजूर, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है हुजूर।
3: उठो रहमान, समझ लो मेरे रुपए अदा हो गए।
0: अरे हुजूर, ये कैसे समझ लो? यहाँ न दूंगा तो वहां देने पड़ेंगे हुजूर।
3: नहीं रहमान, अब इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आजमाता था।
0: सरकार?
3: हाँ रहमान, हाँ।
0: नहीं सरकार, नहीं, इतना बोझ सिर पर लेकर नहीं मरूंगा हुजूर।
3: कैसा बोझ? मेरा तुम्हारे ऊपर कुछ भी आता नहीं, और कुछ आता भी था तो मैंने माफ कर दिया, यहां भी वहां भी। अब तुम मेरे एक पैसे की भी देनदार नहीं हो।
0: पर हुजूर, मैंने तो आपसे रुपया कर्ज के तौर पर लिया था हुजूर।
3: नहीं रहमान, असल में तुमसे कर्ज मैंने लिया था, वही अदा कर रहा हूं। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम मेरी कर्जदार नहीं हो।
0: नहीं हुजूर, नहीं।
3: तुमने भले ही जानकर मेरे ऊपर कोई एहसान न किया हो, पर असल में वो मेरी धर्म पर एहसान था।
0: हुजूर,
3: मैंने भी तुम्हें धर्म के काम ही के लिए रुपए दिए थे, बस हम तुम दोनों बराबर हो गए।
0: सरकार।
3: और रहमान, तुम्हारे दोनों बछड़े मेरे यहाँ हैं, जी चाहे लेते जाओ, तुम्हारी खेती के काम आएंगे।
0: हुजूर, को इस नेकी का बदला खुदा देगा। मैं तो आज से अपने आप को आपका गुलाम समझूंगा।
3: नहीं रहमान, नहीं, तुम मेरे दोस्त हो।
0: नहीं हुजूर, गुलाम।
3: गुलाम छुटकारा पाने के लिए जो रुपए देता है उसे मुक्ति धन कहते हैं। तुम बहुत पहले मुक्ति धन अदा कर चुके हो रहमान, अब भूल कर भी ये लफ्ज मुंह से न निकालना मेरे दोस्त।
0: सरकार, खुदा आपको सलामत रखे हुजूर, खुदा आपको सलामत रखे।

मुक्ति धन। अभी आपने मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी का ये रेडियो नाट्य रूपांतर सुना। रूपांतर श्री बी एस भटनागर ने किया था। निर्देशक थे सुशील बैनर्जी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री बाकर मुज्तबा, राजेंद्र वर्मा, रईस मिर्जा, एच के वैश्य, एल एन भारद्वाज, आर एच चिश्ती, कारी मोहम्मद इलियास, मुमताज मिर्जा, जया मेहता और ललिता शंकर।